सुमन कल्याणपुर और नमाइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे तू सबसे हसी है दीवरुआ। रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे दोस्त मिल जाए तुम जैसा उसे ज़िंदगी से फिर शिकायत क्या होगी। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी सारा सारा है। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी धरती से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी धरती से हमने पेश किए हैं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी जारा जारा है, भी आप सुन रहे थे। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। फ्रॉम द मूवी गीत से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, खामोश चेहरे पर हज़ारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हज़ारों पहरे होते हैं, हंसती आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं।

लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। दिल से चाहने वाले लाइफ में एक बार मिलते हैं, दिल से चाहने वाले लाइफ में एक बार मिलते हैं, उन्हें कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खो मत देना। हम हैं प्यार की डगर के दो मुसाफिर, फ्रॉम द मूवी दो मुसाफिर से हम पेश करते हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम हैं प्यार की डगर के दो मुसाफिर। सुनने वालों, एक गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। हम ना कभी होंगे जुदा, मौत हमें आए तो क्या, फिर जन्म लेंगे हम। किशोर डा के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए ये सुंदर सा गीत मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ताजमहल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है अभी ना जा मेरे साथ ही, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे, आ रे।

अभी आप सुन रहे थे अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे, पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ताजमहल।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ताजमहल से आप सुन रहे थे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। जिंदगी में हमेशा उस इंसान की कदर करो जो अच्छे वक्त में आपकी खुशी में शामिल रहे और बुरे वक्त में आपका साथ दे। सुराहिदार गर्दन कोयल सी है आवाज फ्रॉम द मूवी अमन से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

0: To enjoy ever.
1: अभी आप सुन रहे थे सुराहेदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नास। फ्रॉम द मूवी अमन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। पुजारिन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा प्यार मेरा।

नमाई दी मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पुजारिन से हमने पेश किए हैं मेरा प्रेम हिमालय से ऊंचा सागर से गहरा प्यार मेरा। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे यूं मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रस्तों की तरह। फ्रॉम द मूवी अपने हुए पर आए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

में पराए हैं फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मैंने बुलाया और तुम आए। लता जी की आवाज़ में अभी आपने सुने हैं और म्यूजिक दिए हैं शंकर जय किशन जी। दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज़ है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हम पेश करते हैं, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, फ्रॉम द मूवी जिंदगी और मौत से हमने पेश किए हैं, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे। एक गलत बात और एक अधूरी बात न जाने कितने ही रिश्ते तोड़ देती हैं। जिंदगी है क्या, सुन मेरी जा, प्यार भरा दिल मीठी जुबां। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी माया से आप सुनेंगे और म्यूजिक दिए है सलील चौधरी ने।

फ्रॉम द मूवी माया से हमने पेश किए है जिंदगी है क्या सुन मेरी जा प्यार भरा दिल मीठी जुबा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वक्त है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले एक बात बोलूं, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातें पहचान सके, भरोसा उस पर करो तो तुम्हारी तीन बातों पहचान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह।

अभी आप सुन रहे थे हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं, आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में एक चीज तो कभी डिलीट नहीं होती, जिंदगी में एक चीज तो कभी डिलीट नहीं होती, और वो है किसी की यादें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आज और कल।

अभी आप सुन रहे थे ये वादियाँ ये फिजाए बुला रही है तुम्हें, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे।

0: found Hindustani radio ka karyakram aap shrotaon ke seva mein live broadcast hai. Natuurlijk beluisteren via internet ke lehro dwara foundfm.nl par ye karyakram aap sun rahe hai. Hamare full team ki taraf se aap shrotaon ko ek baar phir se swagatam karyakram mein. तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागत तम कार्यक्रम में नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सो सो लोबी लोबी नांगा ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू. तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइश हो इश्तिहारे हो जरूरी खबरें या कॉमर्शियल्स आप बनवाना चाहते हैं किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे ये भी किफायत सस्ते दाम में. मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो. आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेलेटेडेंस कंटोर यूर फन मांडाग तोत फ्रेडाग फन नीग यूर स्मार्गंस तोत फेव यूर स्मिडाग दफ्तर कतार का नंबर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर 070-362-2077. जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम भी है. इसी तरह जरूर ढंढोड़ा पीते रहना यारो हम लोगों के बारे में. बेंतिनो के लिए फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है. सभी जानकारी 070-365-2247 पर आप तार करें. बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ यारो. बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक जो रिलीज किया गया था 1964. ब्यूटी क्वीन विजयंती माला जी के साथ राज कपूर जी ने राज कपूर जी और राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म में भी काम किए हैं तो मिलकर काम किए हैं. इस फिल्म में संगीतकार है शंकर जय किशन. तो दो नगमे रह गया था सुनाने का इस फिल्म से तो तुरंत मिलके सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे मज़ेदार सॉन्ग जो लोगों को उस ज़माने में काफ़ी पसंद लगते थे. कुछ को नहीं कुछ को ज़्यादा. मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया. भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये गाया हुआ अति सुंदर बयान मिलके सुनते हैं फ्रॉम द मूवी संगम.
1: मैं बुढ़ा

Beautiful song, Mazze Daar song from the movie Sangam 1964. Composed by Shankar Jai Kishan aur sunai aap sabhi ko Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar ji. Ek aakhri bayan aap sunenge from the movie Sangam. Beautiful song, Ich liebe dich, I love you. Us zamane ka mashhoor gaane wala Vivian Lobo ke beautiful आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे. लिखा है ये अति सुंदर बयान को शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी ने मिलके और कंपोज किया है शंकर जय किशन.

0: അയച്ചണ്ടേ.
1: തീർച്ചയാക്കേ.

Ich liebe die, I love you. From the movie Sangam 1964, Vivian Loboke, Beautiful Awazmi, composed by Shankar Jai Kishan. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फ्रॉम द मूवी संगम आप सभी को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1964 में, फिल्म जिंदगी। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न विजयंती माला जी के साथ, और महान अभिनेता द ग्रेट राजकुमार जी, महमूद हेलन और जीवन भी इस फिल्म में काम किया है। संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन। तो फिल्म जिंदगी में से अब आप नगमे सुनेंगे। अगला बयान शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को। पहले मिली थी सपनों में, हसरत जय पूरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान रवि साहब जी के मधुर आवाज में, संगीतकार शंकर जय किशन के साथ पर।

दिल को छू लेने वाला नगमा हमने जफाना सीखी। ऐड फिल्म जिंदगी नीति फिल्म सेस्तक सुरों का बादशाह रफी साहब जी। तुम्हारे ये साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स यारो कि जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, प्यार की बातें करते करते उसके नैन भर आए थे। मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, क्योंकि जब वो बिछड़ता है तो फिर तकिए पर भी नींद नहीं आती यारो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी यादें और तस्वीर ही है, तुमसे अच्छी तो तुम्हारे यादें और तस्वीर ही है, जिनको जब दिल चाहे जिनको जब दिल चाहे बुला लूं और जब दिल करे गले से भी लगा लूं। माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हम हैं, माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हूं मैं, लेकिन जब हम जैसे हूं अब तो तुम्हारा हूं मैं और सदा ही रहेगा।

हम दिल की कमल देंगे, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिंदगी, लता जी और साथियों के साथ। कवर अति सुंदर बयान, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में आप सुनेंगे। और एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब और आशा भोसले जी मिलकर सुनाते हैं घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय शंकर जयकिशन, और लिखा है हसरत जयपुरी।

Beautiful song, wonderful song, Gungharwa Mora Cham Cham Baje. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं. प्यार की दुल्हन सदा सुहागन. एक बार फिर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाली है आप सभी के लिए. मिल के सुनते हैं शंकर जय किशन के साज पर ये अति सुंदर बयान की प्यार की दुल्हन सदा सुहागन.

प्रोग्राम में पद्म भूषण मन्ना दा इस बार प्रोग्राम में एड फिल्म जिंदगी और वो सुनाते हैं आप सभी को मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन के सांच पर। छूने ना दूंगी मैं दोनों बहने, क्या बात है। लता जी और आशा भोसले जी टुगेदर मिलके सुनाते हैं छूने ना दूंगी मैं, शंकर जय किशन के साज पर। जिंदगी द मूवीज द मूवी।

0: खुश रहो।
1: गोपाल बाबा, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए।
0: मदद मेरी? बोलो बिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें और उसकी वजह मत पूछिए।
2: गोपाल साहब
0: जी,
2: बस उधर ही देखते रहोगे?
0: हाँ हाँ,
2: देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना।

0: लीजिए, ये लो बेटा, ये लो बेटा, अपना बेबी को अपने हाथ से पहनो।
1: शाबाश शाबाश
2: ब्यूटीफुल सॉन्ग, छूने ना दूंगी मैं। आशा और लता जी दोनों बहनें ने मिलकर ये थी सुंदर बयान को आप श्रोताओं के सामने पेश की। एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन की सांच पर एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। एड फिल्म जिंदगी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक नए मेहमान विद कोर्स के साथ।

0: आए हैं एड फिल्म जिंदगी लता मंगेशकर विथ कोरस के साथ, मैस्ट्रो महान संगीतकार जोरी दगड़ेज शंकर जयकिशन के साथ पर। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे आप सुन चुके हैं फिल्म जिंदगी का, अब आप सुनेंगे कुछ विज्ञापन और कमर्शियल्स। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, क्योंकि आप जब सुनते हैं तो हम लोग भी और जोर तोर से कोशिश करते हैं कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स सेलेक्ट कर करके आप सभी को सुनाने के लिए। तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ, स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक,
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाश वाणी।

Found Hindustani Radio ka karyakram aap shrotaon ki seva mein live broadcast hai. Hamare full team ki taraf se aap shrotaon ko ek baar phir se swagatam karyakram mein. Tamam taxi drivers jo karyakram ko bhi sun rahe hain aap sabhi ko phir se ek baar swagatam karyakram mein anatilik works boys and girls and badant hai. तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से हो जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो तो देखना आवश्यकता है ना चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा कि आपका धंधा फटाफट चल पड़ेगा या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट या तो शोज वगैरह वो भी फुल हाउस हो सकता है. ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं. किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बना

s morgens tot 5 uur s middags. Kantoor Kanember 070-365-2047. Als studio Qatar Kanember 070-362-2077. De job hier radio kakam ho, denk aan Fahun Hindustani Radio. इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना या रोज चर्चा करते रहना है हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद बंतुनो खिलत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है सभी जानकारी इसके बारे में आप पा सकते हैं बेल टेनिस कंटोर यूरोप 070-365-2047 van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को प्रोग्राम के तरफ और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म दिल एक मंदिर तक और इस मूवी में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट मीना कुमारी जी के साथ महान अभिनेता राजकुमार और कॉमेडियन महमूद जी भी इस फिल्म में काम किए हैं संगीतकार शंकर जयकिशन लेखक शैलेंद्र और शोभा कोटे महमूद जी के साथ बहुत ही फिल्मों में ये महान अभिनेत्री जी ने काम किया है ये भी इस फिल्म में काम किए हैं तो उसी फिल्म में से कुछ गाने आप सुन चुके थे बीते हुए सप्ते और कुछ गाने रह गया था सुनाने को तो एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त सॉन्ग है ये नगमा मेरे दिल के बहुत ही करीब है रफी साहब जी का गाया हुआ ये सुपरहिट एवरग्रीन सॉन्ग की याद न जाए बीते दिनों की A masterpiece of composing by महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन लेखक शैलेंद्र के अल्फाजे और रफी साहब जी की आवाज मिलके सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

Geber este dilco ciu leneva la băian, iadă-nă ea ebite din ochii, ai de felem dil ec mândir. Beautiful song composed by Mahan Sangeetkar Jori de Great Shankar Jai Kishan uit 1963 Arkya Awaz Arkyal Faze Shailendra Orafi Saab Ji ke beautiful song, evergreen song. Ek aur beautiful song aap suninge aur is baar late hai aap sabhi ke seva mein महान गाने वाली नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के ये अति सुंदर और एवर ग्रीन सॉन्ग ओ मेरी लाडली देंकान रेडियो राधिका रेडियो राफर यार 60 70

Jullie uit de film Deal Ik Mandir 1963, Suman Kalyan Purji ke Madhurawaz mein Shankar Jai Kishan ke saaj. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, एक छोटा सा बयान आई डू फिल्म दिल एक मंदिर आप सुनेंगे भजन के रूप में. ऑंको फेर इट्स मेयर दान एन मिनट लॉन्ग. महान गाने वाले उस जमाने के एस जानकी जी के महान और मधुर आवाज में.

जबरदस्त आवाज के मालकिन एस जानकी जी के ये अति सुंदर छोटा सा भजन आपने सुना। एड फिल्म दिल एक मंदिर कंपोज बाय शंकर जय किशन। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म दिल एक मंदिर का मैं आप श्रोताओं को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त ट्रेजेडी मूवी जो निकाला गया था, एनिंग दस्त गहरा दाग। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है ब्यूटीफुल माला सिन्हा जी के साथ, मदन पुरी जी इस फिल्म में काम किया है, संगीतकार रवि शर्मा और लेखक शाकिर बादायूनी के गाने आप सुनेंगे। तो उसी फिल्म में से कुछ नगमे मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने को। तो एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनेंगे, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया, रवि साहब जी के जबरदस्त ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे, कंपोज बाय रवि।

आज उड़ता हुआ एक पंछी, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गहरा दाग 1963, रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज बाय रवि शर्मा। गौर शिक्षा से भरा हुआ बयान आप सुनेंगे और इस बार आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कि सुबह का भूला शाम घर आए वो भूला ना कहे।

अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान एड फिल्म गहरा दाग में हितेंद्रियन शस्त्र कंपोज बाय रवि शर्मा और आशा भोसले और साथियों के साथ अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी गहरा दाग में हितेंद्रियन शस्त्र रवि शर्मा के साथ पर एक बार फिर बहुत ही सॉफ्टली आवाज में ये नगमा को प्रस्तुत किया है आशा जी, मिलके सुनते हैं कि कैसे कहूँ मैं बात जिया की।

कैसे कहूँ मैं बात जिया की। ए फिल्म गहरादा 1963, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले इन एन अंदर स्टाइल गसंगे, गकॉम्पोनेर्ड डोर माएस्ट्रो रवि शर्मा। मैं तेरी हुई रे बालमा, क्या बात है, लवली सॉन्ग सुनने को जा रही है एक बार फिर आयशा भोसले जी फ्रॉम द मूवी गहरा राग, रवि शर्मा के साथ पर।

बालमा ती सुंदर बयान ने आयशा भोसले और साथियों के साथ ये ती सुंदर बयान आप सभी को सुनाया क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले रवि शर्मा जी के सांच पर फ्रॉम द मूवी गहरा दाग रिलीज किया गया था अब 1 जनवरी 1963 को। तुम्हारी फेवरेट साथियों वक्त हो गया है कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। तो अर्ज किया है यारो कि प्यार वो है जिसमें सच्चाई साथ हो, प्यार वो है जिसमें सच्चाई साथ हो, साथी की हर बात का एहसास हो, उसकी हर अदा पर नाज हो, दूर रहकर भी पास होने का एहसास हो। कैसे कहे कि आप कितनी खूबसूरत है, कैसे कहें कि हम आप पे मरते हैं, ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। को दिल से जुदा ना कीजिए, दिल को दिल से जुदा ना कीजिए, सारा सोच समझ कर फैसला लीजिए। अगर आप जी सकते हैं हमारे बिना, अगर आप जी सकते हैं हमारे बिना, तो बस हमारे मरने की दुआ कीजिए। मत सोना अपनी मोहब्बत के कंधे पर सर रख कर, मत सोना अपनी मोहब्बत के कंधे पर सर रख कर, क्योंकि ये जब बिछड़ती है तो तकिए पर भी नींद नहीं आती। वफा का दरिया कभी रुकता नहीं, इश्क में प्रेमी कभी झुकता नहीं, खामोश है हम किसी के खुशी के लिए, खामोश है हम किसी के खुशी के लिए, ना सोचो कि हमारा दिल दुखता नहीं। बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। मिले जो प्यार तो कदर करना, मिले जो प्यार तो कदर करना, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। तो था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, फ्रॉम द मूवी गहरा दाग एक जबरदस्त दिल को छू लेने वाला नगमा है, शिक्षा से भरा हुआ भी है और ये नगमा भी मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि बचपन में मैं ये फिल्म को देखा था, हैप्पी कंपार नख्त अखनी के नुसलाप, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, ट्रेजिक से भरा हुआ, त्रैखेरी से भरा हुआ है। तो जब फुर्सत मिले तो देखना राजेंद्र कुमार जी का ये सुपरहिट मूवी गहरा दाग। कि भगवान ने एक कुसूर की इतनी बड़ी सजा, जिस खूबी से रफी साहब जी ये नगमा को गाया है कि क्या बताऊं, जितने तारीफ किया जाए कम है। अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय रवि शर्मा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला नगमा की भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा। एक फिल्म गहरा डार 1963 कंपोज बाय मास्टरो रवि शर्मा और सुनाया महान गायक डिगड़े सुरों का बादशाह रफी साहब जी। रिकॉर्ड के जबरदस्त नगमा आप सुनने वाले हैं also from the film Gehra Raag 1963 composed by Ravi aur sunane ko ja rahe hai mahan sangeetkar ke gayak jodi Rafi sahab aur Asha Bhosle ji jitne duet gaaye hain sabhi super hit sabit hue tumhe pa ke humne jahan pa liya kya baat hai beautiful songs sabhi प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। आखिरी बयान था एडू फिल्म गहरा राग नेत्रीन सस्तक रवि शर्मा के साज पर अर्षा भोसले और रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाजों में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। हमारे पीपरी साथियों सभी नगमे फिल्म गहरा दाग का आप सुन चुके। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1963 सुपरहिट मूवी हमराही। तो फिल्म हमराही में से आप कुछ नगमे सुनेंगे। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि इस मूवी में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है ब्यूटीफुल कलाकारा द ग्रेट जमुना जी के साथ, शशिकला और महमूद, साथ ही साथ ललिता पवार जी भी इस मूवी में काम किए हैं। संगीतकार एक बार फिर शंकर जयकिशन और लेखक शैलेंद्र जी के अल्फाजे आप सुनेंगे। तो एक अति सुंदर बयान आप सुनेंगे आज फिल्म हमराही 1963 टाइटल सॉन्ग है कि मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। ब्यूटीफुल आवाज रफी साहब जी के और मुबारक बेगम जी साथ दी है। मिलके सुनते हैं स्पेशल।

0: फू सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हमराही टाइटल सॉन्ग, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, uit 1963, Shankar Jai Kishan के साज पर हसरत जयपुरी के अल्फाजे और आवाजें थे, सुर का बादशाह रफी साहब और मुबारक बेगम जी। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
2: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में

मित्रों, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। और ये मन ही है मित्रों, ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता हुआ रहता है। अगर जीवन का सफल बनाना है मित्रों, तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन पर काबू करना बहुत जरूरी है।

मित्रों, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इस पर विश्वास कीजिए। और गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वही मन में

पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, बड़ी दूर रहता है मित्रों। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है दोस्तों।

0: मित्रों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा वो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग, मित्रों, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं है कि आप बुद्धिमान हो या कैसे हो, मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप बुद्धिमान हो। मित्रों, जो हम आपसे बातें बतलाते हैं, आप इसे हल्का में ना लीजिए, हवा में नहीं लीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश करना, तभी आपके बाकी जीवन जो है तभी उसका और आनंद उठा पाओगे। अन्यथा वही घिसते रह जाएंगे हम। भले ही धन दौलत सब कुछ है, मगर पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर में वो खुशी है, हौसला है, कि कुछ खामियां महसूस कर रहे हो आप, कि कुछ कमती है अभी, तो यही है कमती। ज्ञान के सागर में से जितना पानी ले पाओ, जितना ज्ञान ले पाओ लीजिए, वो सब आपके कामे आएंगे। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: भाई बहनों, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि स्वयं के पास सत्य को प्रकट करने का अपना ही तरीका है।

दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बहादुरी से भरा हुआ है मित्रों, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान करना हम क्या बतला रही है, सार्वजनिक बात है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मित्रों, तभी वे हमला कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए दोस्तों। क्या

दोस्तों, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता। फिर से बोल रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखना। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। अपने विचार को पवित्र बनाओ मित्रों, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अनंत काल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है मित्र।

साथियों, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हाँ, इतना मजबूत बनो, स्ट्रांग हो जाओ मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। आपको है एक ऐसा मित्र, एक दोस्त कि सब खब्बू है, आए खाए पिए मस्ती में रहते हैं और प्रॉब्लम भाई तो भागे हैं जैसे हरणा। नहीं, ऐसे इस तरह का दोस्त आपको नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं मित्र। आपका मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ये तो पता है मुझे। और ध्यान रखना इसको भी दोस्तों। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। खुद को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने दिल का उपयोग करें।

0: आशा भोसले जी के साथ दे रहे गीता दत्त एक बहुत ही सुंदर गीत आपके लिए नेहंतिन सस्तक के ये पिक्चराइज किया गया फिल्म से कि इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो जरा हम यहाँ मिलकर सुने गीत के।
1: दुनिया में सबसे अच्छी चीज है क्या जी? पैसा।

দেখে চেঞ্জ হয়ে

0: आशा करती हूँ कि आप जो दुल्हन बनना चाहते हो तो जरूर से आप भी दुल्हन बन जाओ। आशा भोसले जी और शमशाद बेगम जी की आवाज में अपना कौन पराया फिल्म का नाम। ए मेरे दोस्तों, आपको आपको फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से बहुत सारा प्यार मिले।
1: यहाँ कोई फाइव स्टार होटल है क्या?
2: वो किस लिए जी?
1: अरे चाय पीना था भाई।
2: ये चाय पीना तो हमारा होटल का पियो जी। इससे अच्छा चाय पूरा हिंदुस्तान में किधर बने मिलता जी?
1: ये चाय का दुकान है।
2: हाँ जी
1: बनाइए।
3: भाई साहब, मैं जरा पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या?
1: अरे कमाल करते हैं यार, आप पेशाब करेंगे हम देखेंगे, आप नाच क्या कर मुझते हैं, कमाल का शहर है यार।
3: भाई साहब मैं सुटकेस की बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलिए ना, नए आएंगे शहर में?
3: बिहार से हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, एक अजनबी शहर में आप हमको सूटकेस देकर जा रहे हैं, हम लेकर भाग गए तो?
3: शक्ल से तो आप बड़े रईस नजर आते हैं।
1: थैंक यू।
3: आप चोरी कर सकते हैं।
1: अब हाथ मिलाकर सर पर मत बैठो यार, फौरन जाओ तुरंत।
3: थैंक यू भाई साहब।
1: सुनिए, गाना मत गाने लग जाना भाई। कौन चाय मांगी थी पार्लियामेंट से आएगी क्या? अब चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। दिमाग का चक्कर।
3: थैंक यू भाई साहब।
1: आपको क्या लगता है हम आपका थैंक यू सुनने के लिए यहां खड़े हैं? सुनिए, अब हम जा रहे हैं करने, और आप देखिए सूटकेस
3: जी
1: आते हैं।

आपने यहाँ से सुने एक छोटा सा डायलॉग फिल्म कुंवारा, कुंवारा बिरयानी। हाँ नाना, कुंवारा नहीं है बल्कि कौवा बिरयानी ये फिल्म का नाम है। और इस बार है दुनिया मेरी बाप की है।

0: हमें सुन ले कि दुनिया दुनिया आपके बाप की है, दुनिया मेरी बाप की है, ये सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। आप तो सुनते हैं ये सब गीत तो बहुत अलहदा अलहदा है, आपके लिए लाया गया है, है ना। तो यहाँ से हम एक छोटा सा डायलॉग फिर से सुन ले।
1: कल अंदर को एक सपना आया।
2: कैसे सपना?
1: सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठ के दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला।
2: चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था इसने।
1: तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था?
2: अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठ के दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ।
0: राजपाल यादव और शक्ति कपूर जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने एक छोटा सा डायलॉग।

से बड़ा रुपया और आप जरूर से सुन ली होगी, नहीं सुने तो होंगे पर शायद आपको पता नहीं होगा कि इस गीत को किसने गाए हैं। तो हम यहाँ से आपको जरूर से बतला ले कि ये गीत महमूद साहब खुद ही गाई है अपनी ही आवाज में। फिल्म का नाम ही था है सबसे बड़ा रुपया।

0: केवल शादीशुदा लोगों के लिए ये सुंदर सा पत्नी जय जय जय जय जय पत्नी महारानी के उपलक्ष पर सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। कुछ अलहदा अलहदा गीत आपके लिए।
1: बाहर जाना था,
2: जाना था
1: किसी बड़े होटल में, खाना खाना था,
2: खाना खाना था।
1: अब कौन बनाएगा खाना?
2: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन। आज

0: शादी की सालगिरह थी। तुम्हें घर जल्दी आना था।
1: आना था।
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था।
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था।
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन।

फिल्म का नाम हिरासत, फिल्म हिरासत से ये सुंदर सा गीत आपने और मैं भी यहाँ से मिलकर और सुने हैं। कुछ अलहदा अलहदा गीत जैसे हमने कही थी हूँ कि आपके लिए चुन चुन कर और लाया जाता है।

होता है कि पहले अनाज पैदा करें। आपने सड़कों पर देखा होगा कितने दुबले पतले नंगे बच्चे नाक से कुदरती आइसक्रीम बहती थी, मुंह पर 9:15 बजे अपने माँ बाप की बेवकूफी का जीता जाता एडवर्टाइजमेंट बनकर घुमा करते हैं। अगर उनके माँ बाप से ये पूछो कि अगर भाई अपने देश पर ये जुल्म क्यों किया तो लकीर के फकीर एक ही जवाब देंगे कि इसमें हमारा क्या कसूर, ये तो भगवान की देन है। अरे कुमार बाबू, हम हिंदुस्तानी लोगों का धर्म और ईमान एक ही हो गया है। अगर कुछ पैदा हुआ तो भगवान की मर्जी, तो मर गया तो भगवान की मर्जी, लहर पड़ गया तो भगवान की मर्जी। पाप इंसान का और जमानत भगवान है। धड़ाका बच्चे पैदा करने से तो अच्छा है कि पहले अनाज पैदा करें। आपने सड़कों पर देखा होगा कितने दुबले पतले नंगे बच्चे नाक से कुदरती आइसक्रीम बहती थी, मुंह पर 9:15 बजे

दिन आया बुढ़ापा, ये 60 बरस की बुढ़िया, ये 60 बरस की बुढ़िया लेकिन फिल्मी गाने गाती है।

0: प्यार बना के मुझको सारी रात जगाती है, पत्नी मुझे सताती है, मेरी पत्नी मुझे सताती है।
1: और थारी भी नाच न जानो आंगन टेढ़ा, बस वो बात है थारी, तुम कहीं समझोगे नारी को, तुम दोनों हो नारी, खाली मुँह से बात करो हो, दिल में सारे जोश नहीं, उठो बता दो मर्द हो तुम, बंदरिया खरगोश नहीं, नागन से नारी बुरी जो चलत चलत दस जाए, अरे हमसे सीखो इसका मंत्र कैसे बस में आए,
2: कैसे कैसे।
1: अरे थारी
3: का नाम ही पति पत्नी है, ये अलग अलग गीत जो आपके लिए इसी फिल्म से और अन्य फिल्म से लाया जाता है। पति पत्नी मूवी का नाम नेकन 3 सेशन 6 तक में ये पिक्चराइज किया गया है।

0: यस यस
1: आजू बाजू ठंडे फुहारे
0: मरने से पहले मिल जाए यही कहते हैं जन्नत जिसे
2: हो हो हो कहते हैं जन्नत जिसे
0: हो बापा

0: हुआ भंगलाल अरे हम भी तेरे चाहने वालों में हैं ओ दाता दे हमको भी एक प्यारा भंगलाल अरे हम भी तेरे चाहने वालों में हैं।
1: आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ओ दाता दे दे हमको भी एक प्यारा बंगला।

हेमंत कुमार जी की आवाज में, जब जब होता है नाश धर्म का तो जी हाँ, प्रभु अपना अवतार अवश्य ही लेता है।

जी प्रभु जी, मेरी लाज रखो। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और ज्ञान के देवता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, एक बार फिर स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। और कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। और बहुत सारे शुभकामनाएं आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से पेश हो रहा है। यही आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। अपने को और अपना जरूर से ख्याल रखना।

हाँ मन के भीतर तो झांको मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त रहते कदर कर लो, वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता।

संगीत में हम जीवन चरित्र सुन रहे हैं कि जब तक कोई साथ हो उसकी मुस्कुराहट को महसूस कर लो, वरना एक दिन सिर्फ यादें रह जाती है और उन्हें छू नहीं सकते आप।

हाँ हम तो सुने हैं और ये जरूर कहूंगी मेरे प्यारे सुनने वालों कि अक्सर सोचते हैं कल बात कर लेंगे। मैं भी अक्सर सुनती हूँ कि कल पे हम वादे छोड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कल बात कर लेंगे, कल मना लेंगे, पर कभी कभी वो कल आता ही नहीं। तो जो कल करना है सो आज कर लो, एक कहावत है। जो कल करना है सो आज कर लो, और जो आज करना है तो अभी कर लो। कब ये वक्त बदलेगा हमको नहीं पता।

भगवान भगवान जब सिखाता है, जब भगवान जब सिखाते हैं तो सबसे पहले वक्त बदलते हैं। भगवान जब सिखाते हैं तो सबसे पहले वक्त बदलते हैं और फिर वो शख्स जिसकी हमने कभी कदर ही नहीं की, उस दिन समझ आता है कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, उससे संभालना भी होता है। इसलिए जो आज तुम्हारे साथ है उसे दिल से अपना लो। एक छोटा सा टेक केयर, एक छोटा सा प्यार, एक आई एम प्राउड ऑफ यू या एक थैंक यू भी किसी के दिल को सुकून दे सकता है।

कदर कर लो वरना भगवान, वरना भगवान वक्त भी छीन लेते हैं। और वो शख्स भी जिनकी कमी फिर पूरी जिंदगी महसूस होती है, तो वक्त रहते कदर कर लिया करो।

बिल्कुल, आप आ गए हैं, नूर आ गया है, तुम आ गए, नूर आ गया है। फिल्म का नाम आंधी, लता जी और किशोर दा जी की आवाज में, म्यूजिक डायरेक्टर आर डे बर्मन जी और गाना का लिखक का, जी हाँ, लायरिक्स गुलजार जी।

और यहाँ से आपको लेकर चलते हैं फिल्म कभी कभी से। ये सुंदर सा गीत आपके लिए जो निकाल दिया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, चले मिलकर सुनते हैं।

अजीब है ना अगर आप हम सुने ये गीत को कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, और जी हाँ, और अगले पल क्या होगा ये आपको पता है या नहीं, पर मेरी को पता नहीं है, इसलिए मैं दो पल का शायर हूँ। फिल्म कभी कभी से निकाला गया है, और जी हाँ, गायक का नाम है मुकेश जी। इस बार आपको हम लेकर चलते हैं फिल्म मंजिल की ओर, फिल्म मंजिल की ओर, और इस बार सुनेंगे हम रिम झिम गिरे ये सावन।

ontvang alsnog de vriendelike groete. Is baar aapko hum lekar chalte hain, yani ki Faun Hindustan radio ke jariye se hum chal kar mil kar sunte hain ki chal kahin door निकल जाए फिल्म का नाम दूसरा आदमी चल कहीं दूर निकल जाए जहां आपके सिवा आपके प्रेमिका के सिवा आपका प्रेमी के सिवा आपका अच्छे माइंड के सिवा कोई और कोई ना होवे

फिल्म का नाम, फिल्म का नाम दूसरा आदमी। फिल्म दूसरा आदमी से ये सुंदर सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया है। टाइटल सॉन्ग जो आपने सुने, चल कहीं दूर निकल जाए, और गायक और गायिका है लता जी, किशोर जी और मोहम्मद रफ़ी जी।

बार हम सुनेंगे एक बार फिर लता जी की आवाज़ में साथ दे रहे हैं किशोर दा, फिल्म का नाम आदमी और गीत का बोल है तेरे बिना जिंदगी।

क्या खूब फरमा दी है लता जी और किशोर दा जी ने। फिल्म का नाम आदमी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं।

को खुद को खुद ही खुश रखे, खुद को खुद ही खुश रखे, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि खुद को खुद ही खुश रखे, ये जिम्मेदारी आप ही का है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलवाता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।

बिना जिया जाए ना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि तेरे बिना जिया जाए ना। लता जी की आवाज़ में फिल्म का नाम घर, और इसमें भी म्यूजिक डायरेक्टर है आर डे बर्मन जी। आर डे बर्मन जी के म्यूजिक पे हम यहाँ से श्रवण करेंगे।

तेरे बिना जिया जाए ना, फरमा दी लता जी। लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है कि तेरे बिना जिया जाए ना, व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग।

ख्वाबों के पीछे, ख्वाबों के पीछे ज़िंदगी उलझा ली इतनी कि हकीकत में रहने का सलीका भी भूल गए। और आज के ज़माने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहा है, आज के ज़माने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहा है जो आपका शुभ होता देख चिंतित होते जा रहा है। आज के ज़माने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहा है जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, जिंदगी कैसी है पहेली, मन्ना दे जी की आवाज़ में हम सुनेंगे फिल्म का नाम आनंद। फिल्म का नाम आनंद। जिंदगी कैसी है पहेली।

मेरे दोस्तों, जिंदगी कैसी है पहेली, ये मुझे भी पता नहीं। बस ये सही कहा है मना दे जी ने संगीत में, कि कभी ये हंसाते हैं और कभी ये रुलाते हैं। फिल्म का नाम आनंद, फिल्म आनंद से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है। म्यूजिक डायरेक्टर इसका था है सलील चौधरी जी।

0: इस बार हम सुनेंगे किशोर दा जी की आवाज में, किशोर दा जी की आवाज में फिल्म का नाम दाग, और इस बार है म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत का बोल है मेरे दिल में आज क्या है। मेरे दिल में आज क्या है ये हम मिलकर सुनते हैं।
1: दिल में आज

जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। इस शब्दों के साथ सुनने वालों, हम आपको एक बार फिर बहुत प्यार के साथ स्वागत कर रही हूँ।

फिल्म गैम्बलर से निकाला गया ये सुंदर से गीत के दिल आज शायर है। फिल्म गैम्बलर ने खतिन ए नसीफन तक ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है।

गिरा खोल दो, चुप न बैठो, मेरे पास आओ। ये सुंदर सा गीत आपके लिए चलाया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और जरूर सा आपसे बता दें ये सुंदर सा गीत जो हमने मिलकर सुने हैं, ये गीत को गाए हैं लता जी साथ में मन्ना दे जी। हार के भी, हार को भी हंसना सीखिए, हार को भी हंसना सीखिए, क्योंकि रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। एक बार फिर, हार को भी हंसना सीखिए, क्योंकि रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती।

0: जाग दिले दीवाना, रुते है ये बहार की, ऐसे सुनते ही जिल करता है कि ऐसे सिमट जाओ। मैं कहती हूँ फिल्म ऊंचे लोग से निकाला गया सुंदर सा गीत निकलती फाइव तक की पिक्चर है इसकी। और फिल्म है रफी जी की आवाज में हमने यहाँ पे श्रवण की है। मैं कहती हूँ कि आज जो है जो दिन हमको मिला है इसे जरूर से ऐसे कुछ काम करे कि अच्छे यादगार बन जाए।
1: दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, मुझे अफसोस है, अभी अभी दो एक ऐसी बातें हो गई हैं कि मुझे इस महफिल से उठना पड़ रहा है।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: बातें कुछ ऐसी हैं कि मैं कह न सकूंगा और शायद आप सुन भी ना सकेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत लूं, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं।
0: ये एक छोटी सी डायलॉग है देवानंद जी की आवाज में।

गौरी जी की आवाज में हमने यहाँ से एक बार फिर सुंदर सा गीत श्रवण की है। खुद को पढ़ता हूँ, खुद को पढ़ता हूँ, फिर यूं ही छोड़ देता हूँ। एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूँ।

0: सबसे बड़ा रुपया ये महमूद जी के आवाज में हमने ये गीत को श्रवण की है, सुने हैं। कहते हैं कि चिंता को छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य ही ना समझे उन्हें शून्य की तरह मोल दो। शून्य यानी कि नल की तरह मोल दो।
1: ये मेम साहब है ना, एक ऑर्डिनरी ऑफिस में ऑर्डिनरी टाइप इसे, और ख्वाब महलों की देखती है। हमेशा नजर ऊपर होती है, हमेशा नजर ऊपर।
2: ऊपर भी कुछ नहीं है मेम साहब।
3: तुम्हें क्या मालूम?
2: सच, मैं एक लखपति मनमोहन साहब को जानता हूँ। दौलत उन्हें तो कोई खुशी नहीं दे सकी।
0: सुनिए जी, जिंदगी क्या है,

फिल्म माया से निकाला गया वही मशहूर कलाकार गीतकार यानी कि मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने यहाँ से सुने कि जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल और मीठी जुबान। शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है कि बस दोनों जितना करे टकराने की।

फादर इब्राहिम फिल्म का नाम इज्जत और गीत को गाने वाला था है हाँ जी मैं कहती हूँ है क्योंकि हम वो शख्स तो नहीं रहा पर उनका गीत हम यहाँ से श्रवण कर रहे सुन रहे मन्ना दे जी की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखो, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटनों चले या ना चले मन उड़ता परिंदे की तरह रखिए।

नई तस्वीर चली आई है बहलाने को और दीवाना बना रखा है दीवाने को।

हम हिंदुस्तानी मुकेश जी की आवाज़ में हमने यहाँ से आपके लिए चला दी है। और सुनने वालों, कहते हैं कि अपना घर ही अपना होता है, अपना घर ही अपना होता है, चाहे वो महल हो या झोपड़ी।

0: अहम्
1: हनुमन्तं महाम्यहम्। श्रावण मास के हार्दिक से शुभकामनाएं सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के।

0: ध्यान मग्न रहता सदा पर्वत पर महादेव। महादेव का वास सबकी, भोलेनाथ जी पूरी करते हैं आस। श्रावण मास के हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है सभी सभी सभी लिस्नर को, सभी सुनने वालों को, सभी प्रिय भक्तजनों को जो श्रावण मास में अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए विनती प्रार्थना करते हैं महादेव से। श्रावण मास द मंथ फॉर टूवेडिंग फॉर शिवा एंड द क्राफ्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मोगे द गेस्ट वर्वुल्ड राकन फॉर फ्रेडे, हेट हार्ट ओंटवाकन इन मेदेदोगन एंड द सील द गॉडलिके aanwezigheid van Bhagwan Shiva, Bhagwan Shiv ervaren.
1: Before this song begins, I want to give a special thanks to someone who has been supporting Beat Sentinel from far across the ocean.

अवश्य। जय गणेश। देवा श्रावण मास के हार्दिक से शुभकामनाएं मेरे सभी सुनने वालों के लिए।

अवश्य हर हर महादेव रेगी स्टाइल रेगी रेगी में हाँ हाँ महादेव कव्वाली स्टाइल भजन आपके लिए हमने चुनकर इस वक्त रखी हूँ। तो आपसे तो दो चार बात कर ले, श्रावण मास के हम आपको कुछ बता दें यहाँ से, यानी कि स्टूडियो से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के स्टूडियो से, तो यहाँ से आपको बता रही हूँ। भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीना है ये श्रावण मास। माता पार्वती ने शिव को मनाने के लिए तप किया। इस महीने में शिवलिंग पर जल अभिषेक से मनोकामना पूरी होती है। और कांवर यात्रा और सोमवार व्रत का विशेष हाँ विशेष महत्व है। यहाँ से पुरानी से फरहाल आपके लिए मैं ला रही हूँ। द दीप खान द लखेंदस एंड पुरानी से फरहालन समुद्र मंथन एंड द ऑपकोम्स फन नीलकंठ महादेव जी। द मेस इंद्रिक वेकन द लखेंद फरबोंदन आन श्रावण इस हेत कारण द मंथन फन द कॉस्मिस ओसियान द समुद्र मंथन दोर द देवस एंड असुर ओम द नेक्टार फन ओंस्टैफलकहेत अमृत तफर क्रैखन दार फोर दैट द नेक्टार एक्टर तफोर्सकैन क्वाम रेस द दीप्तन फन द ओसियान हेत मेज दूदलक गिफ्ट ऑप हलाहल हेत गिफ्ट Het gif was zo verzegend dat het de hele schepping dreigde te vernietigen. Toen het totale creatie in gevaar was, kwam Bhagwan Shiv uit onvoorwaardelijke mededogen voor alle levende wezens. En Shiva dronk het verterende gif. Ja, hij dronk het verterende gif op, maar hield het vast in zijn keel om de schepping in zijn buik te beschermen. De intensie hitte van het gif kleurde zijn keel diepe blauw, waardoor hij de naam Nilkant ontving. Om de verterende hitte te verzachten, stroomden de deus toe om offer en offerden heilige water uit de Ganga's, koeienmelk, koele belpatra, belwa en dhatur aan Bhagwan Shiv. Mata Parvati hield zijn keel vast zodat het gif zich niet verder zou verspreiden. Deze daad van immense liefde en opoffering vormt de basis van het ritueel waarbij devoten gedurende Sravan Shivling Abhishek uitvoeren. Mijn lieve luisteraars, u kunt nu een link leggen waarom de Sravan Maas zo belangrijk is en waarom de Sravan Maas bestaat. Mahadev ke bhajan kawali style aapke liye. Yes,

बहुत खूब बहुत खूब। हनुमान चालीसा कवाली फ़ारसी आपके लिए मेरे प्यारे सुनने वालों। द वेस इन द इनर्शी दैट यू ओक।

आपने कर्पूर गौरम के ऐतलाख सुने डच भाषा में और महामृत्युंजय मंत्र के भी के ओम त्रयंबकम् ययामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम्।

आपको मिला है डच भाषा में देने सुनने के लिए श्रावण मास के ये पावन स्पेशल आपके लिए जो पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से आपको धन्यवाद किया जाता है और यही आशा उम्मीद है प्रार्थना है शिवा से महाशिव से कि हम सभी के ऊपर उनका दिव्य दृष्टि सदा बने रहे।

यहाँ से हम चलते हैं सुनने के लिए कुछ। सभी को यहाँ से बधाइयाँ भी दिया जाता है। आज शनिवार है जैसे आपको पता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सुबह जागते तो सोचते हैं आज कौन सा दिन है, तो उस पर थोड़ा से हमको रिमाइंडर सोचना पड़ता है। हाँ हाँ, जल्दी से जागना है तो सोचना पड़ता है सच्ची में आज शनिवार है कि रविवार है कि शुक्रवार है। हाँ, जश्न मनाने के लिए तो हाँ हाँ, एक बात तो है ये, जब हम आँखें खोलते हैं ज़्यादा से सोच नहीं पाते, फिर हमको खुश होना चाहिए कि हमारा आँखें खुल गई है, मतलब कि हमको एक नया दिन मिला है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, है ना। तो यहाँ से सभी को एक शुभकामनाएं पेश किया जाता है, जो जिसके घर में नए शिशु आए हैं, परिवार आए हैं, यानी कि कोई अन्य देश से अपने देश में आए हैं या हॉलैंड देश में आए हैं मेहमान बनकर, या आप भी जाते हो किसी अन्य देश में यात्री बनकर, जिनका सालगिरह है आज। हाँ, जब हमारा जन्म हुआ तो हमारा सालगिरह भी होता है ना। हाँ, तो सालगिरह हम मनाते हैं हर साल, जैसे श्रावण मास भी हम मनाते हैं हर साल। हमारे ऐसे कई अन्य इष्ट देव की जन्म तिथि भी होता है हर साल, और जो शादी विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत से बधाइयां पेश हो रहा है शादी बंधन में बंधने के लिए। ये हाँ, इसमें भी बहुत सारे खर्चा होता है ना। हाँ, इसमें भी बहुत सारे खर्चा होता है, और मतलब ये है कि शादी विवाह ऐसा तो शादी तक तो जब तक ऋतुवेल होता है, नाच गाना होता है तो अच्छा लगता है, मगर उसके बाद तो एक हकीकत जीवन शुरू होता है। जब फ्रिंद देन रहते ना प्रेमी और प्रेमिका, तो उसका महत्व कुछ और है, और विवाह के बंधन में बांध कर एक ही छत के नीचे रहना, उसका स्वाद कुछ और है। वहाँ पर चाहिए फर्त्राव होने के लिए, विश्वास होने के लिए, एक दूसरे के लिए सम्मान रखने के लिए, इज्जत करना सीखना चाहिए उसमें। और बात ये है, इज्जत रिस्पेक्ट मान सम्मान देने के बाद भी अगर छोटा से कुछ गलती हो जाए ना, तो माफ़ी मांगना ये भी बहुत बहुत बहुत आवश्यक है। हाँ, सॉरी बोल देना, सॉरी SORY 5 अक्षर के ये शब्द है ना, सॉरी 5 अक्षर के ये शब्द है, छोटा है, मगर कभी कभी बहुत बहुत कठिन लगता है बोलने के लिए। हाँ, उसको कठिन लगता है जिनका एखो जो है ना, एखो जिनका एखो बहुत बड़ा है, उस वो व्यक्ति को सॉरी बोलने में बहुत बहुत दुख होता है। और कभी अपन एको बगल में रख कर और सॉरी बोल दो, तो देखना आपको भी कितना सुकून मिलता है। और एक सॉरी बोलने से मेरे दोस्तों कई ऐसे रिश्ते भी बच जाता है। तो ये 5 अक्षर के शब्द जो है बहुत कमाल के है, सॉरी बोल देना, माफ़ी मांग लेना, अपना रिश्ता जो है बचा लेना, और खुल कर बात करना, पति पत्नी और बच्चों से ऐसा संबंध रख जैसे मित्रता।
अब बच्चों के साथ बच्चों से थोड़ा बचपन भी लाना तो मित्रता बनेगा और बच्चा भी जो है आपको भी अपना मित्र घर जानेगा और आपसे भी बात छेड़ेगा। तो उनको कोई बाहर का व्यक्ति के अनुभव नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा अगर माँ बाप एक दोस्त की तरह अपने बच्चों के साथ, बच्चों जो प्यूबर्टाइट में है सेवन तीन आखिरी यार में, उनके साथ मित्रता निभाना तो देखना आप ही कहेगा वाकई में ये बात में दम है। अगर माँ बाप का अकड़ दिखाओगे हाँ ना, तो कभी कभी बिगड़ जाता है, बच्चा आपको दुश्मन समझता है, पर ये नहीं होना चाहिए। एक दोस्त का रूप धारण करना, अपना माता पिता का वो जो है वो रहना चाहिए, पर थोड़ा से मोड़ लेना अपने आप को मित्रता के रूप से अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा पेश आना तो देखना कैसे आप मिलजुल कर और आगे चलेंगे।

अवश्य अवश्य, जग आरंभ करने से पहले हाँ अपने गौरी माता और गौरी पुत्र को जरूर से आवाहन करें, उनको याद करें, ताकि हमारे सभी कार्य जो है ना वो पूरा होवे और उनकी रक्षा भी होवे, उनकी रक्षक में सभी कार्य होवे।

के तले नीले मतलब कि ब्लाव हिमल के नीचे, हाँ हाँ रणधीर और देवक्स के आवाज में ये मशहूर गीत आपके लिए पेश हो रहा है, नीले गगन के तले। लेस डेंस, एंजॉय।

हो मेरे हमराहे, कौन कौन डांस नहीं किया। हाँ, वो मैं नहीं जो सुनना चाहती, क्योंकि ये डांस म्यूजिक आपके लिए है। इस बार है प्रभात, प्रभात

माँ को गाली देने की हिम्मत आती है भाई।

कर्म कहो किस्मत कहो, कर्म कहो किस्मत कहो चाहे कहो तकदीर, पहले बना प्रभावत पीछे बना शरीर, कर्म के गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करो वैसा ही भरे विधि का यही विधान, कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने जीवन का यही मरम प्राण, तेरी आत्मा प्राणी तेरा अपना ही कर्म। सुनने वाले की सेवा में सारसी नमस्कार, मेरी आदाब और सलाम गुफा हूं कि आज शनिवार का दिन एन ओ के प्रोग्राम और यहाँ से मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपकी सेवा करने जा रहा हूँ। मैं अभी आप प्रोग्राम को सुन रहे थे, कुलेखा जो है सहयोगी और शांता जी के जरिए से यही मैं सोच रहा हूँ, जिन अंदाज में अपना प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किया आपको अवश्य पसंद आया हुआ होगा, वो तो विकसित हुए और मैं अपना प्रोग्राम यहाँ कुछ पल आपके साथ मैं बिताना चाहता हूँ। और आज मैं प्रथम में जो बीमार लाचार है उनकी तंदुरुस्ती के लिए और प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, माता में घर पर सहन शक्ति के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, कोई के जन्मदिन है जश्न है बधाइयां शुभकामनाएं और आपकी मनोकामना जाकर भगवान अवश्य पूर्ण करे, यात्रा पर जाए शुभ यात्रा, इस देश में आए हुए सज्जन गण को एक शुभांदित फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है हमारे साथियों मित्रों दोस्तों और मोईबेर फंदा है प्रकृति ही जो हम के देता हुआ लेना ही पड़ेगा, न ज़्यादा न कम आप जानते हो, और वो जो करता है दार नित उपवास और हमारी बेस्ट साथियों ये दुनिया भर सारी शिष्य में आप ये रेडियो को सुन सकते हो जैसे आपको मालूम है। और आज के कार्यक्रम में जो मैं आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कुछ संगीत आपके लिए चलाएंगे और इंटरव्यू की नहीं है फॉर्मेट से आपको मिलेगा सुनाम से हमारे भैया राजकुमार दौली मोहन से, और कोशिश करेंगे व्यक्ति जो है राजनीति में भाग लेते हैं तो उनसे कुछ बातचीत करना चाहूंगा जरूर, और धर्म के प्रचार जो करते हैं उन लोगों से कोशिश करूंगा कॉन्टैक्ट हो जाए तो कुछ बातचीत होगा जरूर, आपके शुभ संदेश वो लोग भी अपने और विद्वान जो है और राह बतलाते हैं कैसे हम लोग अपना जिंदगी

जो है व्यतीत करना है तो वो अपनी और जहाँ तक उनकी पहुँच है तो आपको समझाते हैं, बतलाते हैं और वही सही राह दिखलाते हैं हमारी साथियों। और यहाँ से जो है प्रोग्राम में मैं जो है आपके लिए मेरे साथ मिलके कुछ पल गुनगुनाऊँ। अगर आप सनातन धर्म के पालन करते हो और आप अपना भंडार जो भरना चाहते हो तो यूँ ही करते चलो और समाज सेवा जहाँ तक हो सके आप भी करते चलो। हमारे साथियों क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, वो तो लेके आए अपने कर्म आके जो है और जाएंगे फिर से यहाँ इससे सिर्फ को छोड़ पर आना जाना। जैसे आपको मालूम है ये दुनिया बनी है इसी तरह से, तो जाना है तो अपने भंडार भर के जाना है ना। तो कुछ पल मेरे साथ अगर आप सनातन धर्म के पालन करते हो तो कुछ पल गुनगुनाइए और मेरा सौभाग्य कि आपके साथ आज का दिन मुझे मिला। चल के सुनते हैं।

भगवान के वंदना करो, भंडार भरो, साथ ले जाना है जो ना, भजन भक्ति धर्म के प्रचार करो। और किसी के काम आते चलो इंसान के नाता। In augustus vandaag 2026 हमारी भारत भूमि में कावर यात्रा हो रहा है बहुत जोर तोर से। यहाँ तो हनुमान जी के वंदना साथियों, हमारी दोस्तों, आपकी मनोकामना जाकर भगवान अवश्य पूर्ण करे। कांवड़ यात्रा है उसे मत भूलिए, जहाँ पे हर हर महादेव जो है बम भोल बोल बम, खास करके जो है हमारी महादेव शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की वंदना। ये कांवड़ यात्रा के अवसर पर स्पेशल आप ही

और आपको बधाई गया शुभकामनाएं जो है कांवड़ यात्रा के अवसर पर, जाके हर एक की वैसे जो है मनोकामना शिव शंकर भोलेनाथ पूर्ण करें।

हाँ साथियों, कांवड़ यात्रा आपके सफल हो, इसमें भाग आप ले रहे हो, पवित्र मां से भोलेनाथ शिव शंकर भगवान हर को कल्याण करे। Vandaag de dag, 1 augustus 2026.

0: शिव आप इसमें भाग भी लेते चलो, ध्यान गुनगुनाते चलो
1: शिव तेरा तू।
0: और दोपहर के प्रोग्राम इन ऊपर हलफे इन हो चला है तो सर्वान राजकुमार रोली मोहन जी।

0: भजन भक्ति करते चलो साथियों, दोस्तों, मित्रों,
1: बाकी सब शिव देखेंगे,
0: सुकार्य करते चलो,
1: शिव शिव गाए।
0: और ये मत भूलना फाहुन पे चू रहना,
1: ये शिव तेरा।
0: आप ही किस स्टेशन जनता के आवाज है ना, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन। हमारे साथियों 24 घंटे लगातार इसे आप सुन सकते हो, क्योंकि रोते हुए आंखों में इंतजार होता है ना, ना चाहते हुए भी प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम वो सपने जिनके टूटने पर भी, हाँ हाँ, जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार जो होता है हमारी

0: तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले से ताजमहल कहते हैं।
1: आप हैं के हिट स्टेशन फाहुन, हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

और दिल में दर्द रोया, हंसने वालों को क्या पता रोने वाले किस कदर रोया, मेरी तन्हाई का आलम न वही जान सकता है जिसने जिंदगी में, हाँ जिसने जिंदगी में किसी को पाने से पहले ही जाकर खोया।

साथियों यही कहना है कि प्रशंसा से पिघलना नहीं और आलोचना से कभी भी उभरना नहीं हमारी साथियों।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: U luistert naar Hindustani Radio,
2: Radio Fama,
3: digitaal radio, internet fama.nl.
4: अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है, तब जाकर के किसी की माँ को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है,
5: चुगलखोर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, चुगलखोर वही इंसान होता है जो हर किसी का बनता फिरता है लेकिन होता किसी का नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की चुगली करता हो उससे ये उम्मीद कभी मत रखना कि वो किसी और के सामने आपकी चुगली नहीं करेगा। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। इसलिए कहते हैं कि 4 कदम चोर से, 14 कदम लखोर से और 74 कदम चुगलखोर से। चुगलखोर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, चुगलखोर वही इंसान होता है जो हर किसी का बनता फिरता है लेकिन होता किसी का नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की चुगली करता हो उससे ये उम्मीद कभी मत रखना कि वो किसी और के सामने आपकी चुगली नहीं करेगा। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। इसलिए कहते हैं कि 4 कदम चोर से, 14 कदम लखोर से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाए रखना।
3: हंसते गाते झूमते और हर पल जिंदगी में आपस में प्यार जताते हुए जीते।

0: राम नमस्ते और अस्सलामुअलैकुम। हमारा नाम है निशा सांची जगदेव और आज हम आइलिन है तुलों से बतियाए सर्कर सिक्त के बारे में। सर्कर सिक्त एक ऐसा बीमारी है जो जैसे प्लीन चेहरे है प्लीन उरे है उसे स्नल बढ़े है। लावा इसे हम बता दे कि हर चार मिनट पे एगो पेशेंट दतरा लगे जे एगो नहीं जा दतरा लगे तो हर चार मिनट पे एगो पेशेंट भीतर आवे है दुनिया भर में। इन्हें कई सरनाम में है दुनिया भर में तो सरनाम में भी है वहाँ हम लोगों पीछे ना है लेकिन हुई कि हमारा हम आज महिला सर्कर सिक्त के बारे में बतियाए और हम आंगिला बतावे तो लोगों से कि सर्कर सिक्त के कारण कौन ची है। कौन ची के कारण है सबसे बड़का कि सर्कर सिक्त बढ़े है। अब तू सोचिए कि सर्कर सिक्त तो हम सुन लेना कई रकम के होवे है मार हाँ सर्कर सिक्त दुई रकम के होवे है का तिप एन और तिप त्वी। अब जो औरत लोग स्वांगर रहे है का उके भी सर्कर सिक्त पकड़ सके है। मार यहाँ पर हम बतियाबे आज सर्कर सिक्त तिप त्वी के तो आप सोचियो कि भी सर्कर सिक्त तिप त्वी कौन ची है। जब हम लोग खाना खाएला और जब हम लोग खाना भीतर जा है तो हम लोग के देह में इंसुलिन बने हैं। अब इंसुलिनवा के भी अपन काम है तो जब इंसुलिनवा अपन काम ओकर काम कौन ची है। इंसुलिना के काम है जो हम लोगन चीजन खाए ला जो हम लोगन रोटी बामी भात नुमर ऑफ हम लोग सब चीज खाए ला तो उतनी ही तादाद में हम लोग के देह में ओम से तो होवे हैगा ग्लूकोस में। अब ग्लूकोस कौन ची है हम लोग के देह में हम लोग मेरी से तेरा में सुक्रू बोली ला जो उनके सर्कर तो उस सर्करवन के इंसुलिना के काम है ली के जाई के हम लोगन के सेल तक। अब सेल तक वहाँ जाए के क्या करे है वहाँ पर ऊपर ब्रांत हुए है जो नोडख रहे है ऊपर ब्रांत हुए है और जो न नोडख हैगा तो ओके हम लोग के दही ऑप्सलान करे है फैत में। तो अब तो सोचियो कि अच्छा तब ऐसे हम मोटा होइला। हाँ भैया ऐसन के हम लोग मोटा होइला ऐसन के हम लोग के दही में मोटापन बड़का भरे है। हम लोग पहले के हम लोग के आज ही आज लोग रहा जोन तो उ सब हन सवेरे के जो नहीं खा लेवत रहा ओकर बाद खेती नहीं कर जात रहा फिर साँझ के जब आवत रहा घरे तब खाना पक्कत रहा और खाना बने तब वहाँ से हम लोग फिर सब कोई शुरू करती खाए के। अब शायद कौन ची है एक शायद हम लोगन के सुपर मार्केट हो गए है कैन गो। अब शायद हम लोग के आइस कास्ट हो गए है डीप फ्रीज हो गए है नुमर ऑफ। अब हम लोगन खाना बवार कर लीला और हर दो घंटा पे कुछ ना कुछ खाई ला। तो मोसे समझिए कि जब हम लोग हर दो घंटा पे कुछ ना कुछ खाबे तो हर दो घंटा पे हम लोग के दही में इंसुलिन बने हैं हर दो घंटा पे मशीनियन चले दहिया भर के हम लोग के मशीनियन के रुस ना रहे हैं। तो अब हम लोग के जब मशीनियन के रुस ना रहे हैं तब वहाँ पे क्या हुए हैं हम समझाई तो लोग जब हम लोग के हर दो घंटा पे दही इंसुलिन बनाई और इंसुलिन बनाई के इंसुलिन के काम हैगा सर्करवन कोली द्रतवन ली के और हम लोग के सेल तक ले जाए के हर दो घंटा पे वहाँ कमारी खटखटाएला हम लोगन हर दो घंटा पे अपन सेल के ईदी तेर करेला कि ये लास्तख फाला करेला। मोय से बताई हम लोगन अपन सेल के लास्तख फाला करेला कि हर दो घंटा पे वहाँ पर एगो डिलीवरी आवे है और जो ची नोडख रहे तो फरब्रांत होवे है और जो ची न नोडख रहे हैं तो वो अप्सलान होवे है। एक सोचतू के को मखसैन इसी धल्ले मैं अब हम तो के को फोरबेल भी बता पे हम के तो तोर घर अफस्प्राक हैगा आई के जिससे कि हम आबे सवेरे के जुनी 12 बजे के जुनी सवेरे 8 बजे 12 बजे और संझा के 6 बजे। तो तू जानिए कि तो के हर ई 3 घंटवा अरे हर रोज ई 3 जुनिया पे हम तोर घर आबे तो तू हमार खातिर कमारी अपन खोलिए। मैं अब अचक्के में हम घड़ी घंटा हर एक मिनट पे हर दो घंटा पे जैसे हमके मन लगल मोशन के तोर घरे आवे तो तू अचक्के में हमार खतिन हमसे थक जाइए हमार खतिन कमारी ना खुलिए। और जो तुम्हार खतिन कमारी ना खुलिए तो यही एगो बड़का कारण हो सके कि हम लोग बोल दिला एक हम लोग बोलला इंसुलिनरी रेजिस्टेंसी वहाँ तू हमके हमसे इरिटेर हो गए हैं तो तोके आस फोर व्हील बताएला हम सेल के और अपने आप के हम बताएला आस इंसुलिन। तो जब हम हर घंटा तोर घरे आबे और बिना आसप्राक करे आबे सो मार एनी टाइम हम तोर घरे आबे तो तू हमसे इरिटेर हो जाइए वैसन के हम लोग के सेल जोन है हम लोग छीन पर छीन हर दो घंटा पे खाएला कुछ ना कुछ मुँह में ना रेला और वैसन के हम लोग के पांक्रियास अरे इंसुलिन आनमा करे है और एन श्रीनवा के काम हर दुई घंटा पे हम लोग के फूडिंग स्टॉफ फोन जो हम लोग खाना पीना कर चुकी ला ओके लेके जाए के सेल लगे तब सेल वो भी ना इतनी देर हुई बताओ ना। तो हम ऐसे हम लोग के चाहिए अपन सेल के तत्रुष्ट लावे के और इस स्थिति वजह से अभी हम लोग भी एक दूसरा मेरी से वोट है अभी एकर खातिर एक हम लोग बोला इंसुलिन रेजिस्टेंसी कि जहाँ पे सेल ब्लॉकेरा करे लगे है इंसुलिन के और जो सेल ब्लॉकेर करे लगी इंसुलिन के तो ओकर साथ साथ हम लोग के देही में सुक्रुवा जोन है न फरफूरा हो पाई सलवा तक वहाँ से खून में हम लोग के सुक्रु चढ़े है। तो सब सोच ला कि आप थोड़ा बहुत समझ लो कि कैसे शुरू हुए हैं ये शुरुआत है जब सेल ब्लॉकेर करे लगे इंसुलिन तो ओके हम लोग बोला इंसुलिन रेजिस्टेंसी जब खून तब वहाँ पे अब डिलीवरी ना पहुँचे है माखासन तक हम लोगों के सोय करवा ना पहुँचे है बट मात आँख लग कि हम लोग के खून में जो है सुक्रु चेहरे लगे हैं। अब तक सोय कर सीखता जो हम लोगों खून में ना पीला सुक्रु ओके हम लोग बोलेला सिम्टोम ओकर मतलब है वैसे हम लोग जानी ला पास कि हम लोग के देही में सुक्रु के बीमारी है कि ना है। अबे इंसुलिन रेजिस्टेंसी जो रहे है तो बटना तू ना बाडा करिए तो के ध्यान ना रही तो बोलिए तुम खजान थैली इन सब चीज मोई चले है पिको बेलो मार जब इंसुलिन अपन काम ना कर पावे है खून में सुक्रु ज्यादा रहे है तब हम लोगों ने के बोला साइकर सिक्ता डेथ नुमोवा साइकर सिक्ता तिपत्वे मा एकर साथ साथ अब कौन चे भी देही में औरो जब हम लोग के खून में सोयकर ढेर रहे हैं तो हम लोग के पांक्रियासवन जो है वो भी वो बहुत छप पावे तो वो बहुत छप हुआ पावे हैगा कि ए जो सुक्रुवन है खुनवा में उन्हें पौनिक रहा है दोस्त हम के चाहिए और कम करता पठाई के अब कम करता मन क्या है एक्स्ट्रा इंसुलिन पठाएगा वो तो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन पठाए तो वही के कारण से हम लोग के अल्फ लीस्क्लीट इन दीस द पांक्रियास इस अब अख्तर जा तो अब देखिए कहाँ से हम लोग बीमारी खोजलिन है हम लोगन हर दुई घंटा पे जोन खाई के शुरू करीला छीन पर छीन खाई के शुरू करीला तो सबसे पहले हम लोगन सोयकर सिक तो अंत विकल करब। हाँ तब ऐसे है कि हम लोगन सबसे पहले अब इंसुलिन रेजिस्टेंस अंत विकल करब तो फिर ओकर बाद हम लोगन सोयकर सिक तो अंत विकल करब। सोयकर सिक तक के बाद अब वही कहानी खत्म ना है आप सुन लो है लो कि मने लोग बोले कि जब से हमके सोयकर सिकतवा आयल हैगा जब से सुक्रुवा के प्रॉब्लम आयल है तो और प्रॉब्लम आवे लगे हैं ऑन दैट से दहिया में और प्रॉब्लम इंद्रदात आएगा। अब कैसे प्रॉब्लम होना आएगा जब तू सर्कर तो उच्चा रही खून में तो दही में इंसुलिन ज्यादा रही तो पंक्रियास वन भी ठक जा है ओहु भी अख्तरोइ जा है। अब एगो ऑटो बाय फोर बोल जो तो के है और तू ऑटो वा चलावे हले रोज ओके रस्त ना देवे हले ओके सर्विस बर्त ना देवे हले तो ऑटो वा टूटी ना बिगड़ी ना ओइसन के हम लोग के पंक्रियास जो रहेगा अल्फ्लीस के जो उनके काम है इंसुलिन बनावे के देही में वो भी अख्तर जा है। मा ओकर साथ साथ जब हम लोगन जो अरे सेलवन हम लोग के देही में हैगा ओकर सेलवन के मतलब गुड्डवन है जहाँ जहाँ देही भर हम लोग के इनके मिलियार्ड को सेल से बनल है उसे हम लोग के देही को फॉर्म है और जब हम लोग उस सेलवन के भी रोशन दे तो उस सेलवन अपने आप के कब हेयर स्टाइल करी और कब अपने आप के फिर से opbouw krijgen. Dus daarom is het heel belangrijk dat we niet om de 2-3 uren eten. We moeten een vaste patroon hebben. We hebben het over een gezonde levensstijl. En hier ga ik een suikerziekte uitzien om die we ontstaan hebben. Maar als je dan niet weet hoe we het goed kunnen doen, hoe we het goed herstellen, dan vertellen we hoe we het goed kunnen doen. We hebben het gezien in de karen, dat we het goed kunnen doen. We hebben het मार हम लोग के देही में छीन पछीन हम लोग खाए ला ओकर साथ साथ कौन ची और है जो हम लोग के देही में सुक्रु बढ़ावे है ओकर बारे में अब तो सब बता। तब सोयकर सिक्त कैसे अनस्थान हुए हैगा हम लोग कौन ची हम लोगन के देही में सुक्रु में अमसत हुए है पहला चीज है सोयकर जो है सुक्रु जोन है जो हम लोगन के लड्डू भैल जलेबी भैल बॉल भैल बर्लिना बॉल शैम बॉल नुमार अलग सोर्त बॉल सब जो में सुक्रु फोर आवे है मीठा आवे फोर वो हम लोग के देही में जाए के अमसत होवे है ग्लूकोस में माँ ओकर साथ साथ हम लोग के देही में जो कौली द्रात हम लोग बोलीला कौली द्रात भी जाए के हम लोग के देही में अमसत होवे है मेरी ग्लूकोस में खुली कोसा हम लोग के देह में जब चेहरे तक हम लोग उनके सयकर मीत होवे हैं और ई कोली द्राट से भी होवे हैं। कोली द्राट बताइए तो भात रोटी नसीबा मी आलू कुसबान कसेरा नुमारो कसाबा जो उनके हम लोग बोलना ये सब सब चीज वन ओम सत होवे देही हम लोग जब हम लोग खाइला तो माख में तुरा है दिन दारम में ही हम लोग के खून में जाएगा वहां से हम लोग के खून में सयकर चेहरे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग के चाहिए ये सब चीजवन निकारे के अपन खाना पीना में से। आप जानो है लो कि आपके प्रॉब्लम हैगा सयकर के तो धीरे धीरे करके ना एक दिन में धीरे धीरे करके निकारो इनम से जो निकार दियो तब वहां से देखिए तो सयकर स्टेबल हुई आप होप ना अपेफ करियो वंत ऐसा इन मेंस दी एक वी दी सेल्फ हैव बखलाइट ऑन साम इन ओवरलेग मेट द आर्ट्स द तरह से बतियाई के हम इस अभन बीमारियन के तुरख लेलिन हैगा दतरा से बतियाई के और आप भी इस सब चीज वन चकरियो तो दतरा से अरे अफ स्टेम कर लियो दतरा से बतियाई लियो कि दतरा देख आज से हम ऐसे ऐसे करबे। पहला चीज जो सयकर और कोलिद्रात अपन मनु में से निकाल दो। जब आप सयकर और कोलिद्रात अपन मनु में से निकाल दियो तो देखियो आप धीरे धीरे कि आपके ब्लड सयकर सोविसो स्टेबिलिसेर होएगा। En het belangrijkste is dat je 70% groente hou. Op een plattekje 70%. 70 man is 70. 70% groente dharo. Oman jahan tak dhar payo, kaccha groente bhi dharo. Kaccha groente bahut belangrijk hai. Ab kaccha groente kon chi hai mane? Isse pehle koro. Koro ke bhitar se slice kar leo. Lekker lage kunche ke apan daant ke bhi kuch kaam de wo to. Phir okar saath saath टमाटी भैल खीरा भैल क्रोप्सला भैल ये सब चीजवन कच्चे खाओ। कोरो बहुत आसान है ये जोन कोहड़ा हम लोग बोलेला पॉम्पून कोहड़ा हम लोगन गरेत के सलाद इस इन्हें बनाई सकेला तो यू लगता है मिंदर गब्रयोग फानी पॉम्पून कमती गब्रयोग करिए वहां ते तरकारी रहे तब बीच है तनी ढेर खवाई जाएगा मार ये कहना था als je als het je lukt mag je voldoende gebruiken maar hem gaan leggen al lukt hoe wij gaan dat is een thora kohorwa me gebruiken maar wat ik wel gebruik is die wortelen ook kacha wortelen toen hem nog een murai boli la murai is in rehe maar lel kwa meke oké kacha gebruik karo gret leo raspakal leo or apan khana bereid karo i rakam se dat het mooi aan toe gaat tu kacha ja khaiye dat door dehi me सब विटामिन और मिनरल पहुंचेगा ऐसा बात नहीं है कि एक को विटामिन और मिनरल बस खादित होई के तो देह तक पहुंची बट जब हम लोग खाना फरहित करके बनाईला तो जब खाना फरहित होवे है तो ओमन में से विटामिन मरे हैगा कितना एंजाइम बस खादित होए मरे है वारदोर एंडलक हम लोग के जितना हम लोग खनवा खाईला जितना हम लोग तरकरिया खाईला पूरा ना जा हम लोग के देह में ढेर बस खादित हो जा तो हम लोग के देह के ना नोदा खाएगा तो हम लोग के देह बोले ओ हम कहना ना उड़ा तो तू निकल जा हबड़ा हो जा हम कहना बात हैगा और जो मन लोग गोश मछली खाएगा हेल खुद मार ढेर ना खाइयो गोश दू टुक्का से ज्यादा अपन प्लेटी में दिन भर खाते ना धरो जब मांगो खाए तो मछली खाओ मछली लिप्स खाद फिश खाओ अंडा भी खाई सको ये सब चीज में धरे हेल फिल प्रोटीन फॉर आवे हैगा दिस दारम इज इट बलंगरे कि 30% प्रोटीन रही चाहे मछली से चाहे अंडा से चाहे नुमारो एंड इट इज हेल बलंगरेक दैट यू योर ग्रोंटे एंड योर प्रोटीन मेट गेजोंडे फेटे गब्रुक गेजोंडे फेटे सेन हेल बलंगरेक है जब हम लोगन के देही सुक्रु ना पाएगा सुक्रु इन जिन फन कोलिड्रात सयकरो सयकर्स ना पाएगा इजन कोलिड्रात माने बामिन एसिड रोटी ई सब चीज ना पाएगा और सुक्रु माने चीनी जो हम लोग बोलीला भी उ ना पाएगा तो ओकर मतलब है कि हम लोग के देह के हम लोग के मशीनिया जोन है ओके चाहिए कुछ और पे ड्राई होई के ओके चाहिए दान ड्राई होई को अब गेजोंडे फेटे एंड लामा यूली एन डिंग नोग सेगे अस यू गेजोंडे फेटे गेब्रुक गात यू कोलेस्ट्रॉल नीट ओमहोग गात नोइट ओमहोग वंट कोलेस्ट्रॉल के दूसर कारण हैगा एंड ओकर कारण हैगा ऑनस्टेकिंग मैं दैट कैन आई इन एन अदर सेसी में एक्चुअली प्राटे इट इज बलंगरेक दैट यू ये योर प्रोटीन gezonde vetten en je groenten gebruikt. De IJC heeft dat je een kana te gebruiken. Maar ook er staat, staat hem nog een iets dat je boelijke dat hem nog een keer dingen ke rust nodig heeft. Je hebt de sabera pahela bhojan kallo, dat behoort vroeg na karo. मा ई हम सोयकर पाशंत के ना बोलिला इंटरमिटेंट फास्टिंग के बोलिला हम हम सोयकर पाशंत के ना बोलिला कि खलाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करे के ना आप अंडर बखलाइडिंग पहले अपन सोयकर स्टेबल करो जो देह में सुक्रू है ओके स्टेबल कर ओके जब स्टेबल कर चुकी है तब जाए के फर्दर इंटरमिटेंट फास्टिंग आनखराडन वट अंडर्स टू हिपो में जाए सके हेले मैं जो मन लोगों के जो मन लोग सोयकर पेशेंट न है और सोचत हुए कि पलवार में सोयकर आवे फोर तो उस अभन आज से ऐसा के बिगिन कर सके एक हम लोग बोला इंटरमिटेंट फास्टिंग ओम योर लिखाम ये सेल ये ऑर्गाने द नोडिग रुस्ट टू गेवन एंड दैट होल्ड इन als je bijvoorbeeld 8 uur 's avonds hebt gegeten dan eet je voor de avond niet meer je gaat niet meer snacken je gaat pas de volgende dag om 10 uur beginnen en dit is de 14 uren vaste 14 uur intermittent vaste aap drinken kerse koelo lemmetje ke pani ghor ke pisa koelo aap pani pio aap apan tea koffie bhi pisa koha maar bina sukru ke bina chini ke de mensen die niet weten wat sukru is dan is het chini ja de, ab, als je zegt aap apan sukru dan krijgt jouw lichaam niet, geen calorieën binnen waardoor hij niet gaat gelijk starten. Ook een rust rijden. Hoe wil ik hier? Jij net als je de auto start, kun je dat pijlen zijn wat wat garmaai kan. Wil je doet die manier niet zei iets horen dat auto wat start je kan een machine een garmaai op een tempo pijven. Zo moeten wij ook ons lichaam een beetje de ruimte bieden, zodat hij dan later op de dag kan opstarten. Maar deze intermittent fasting is niet alleen tot 14 uur. Als je bepaalde aandoeningen hebt. जैसे कि कोनो ऑनस्टेकिंग है तो कन्या ओपिरा तो यहाँ पिरा वहाँ पिरा ये सब पीरवन संघे भी लड़े के मनीर हैगा एंड मनीर इस दान कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वहाँ जो धीरे धीरे है ओके चेहरा 16 यूर तक धीरे धीरे चेहरा 18 यूर तक और यानी हम लोग के देह में तो वंद्र हो गएगा फनाफ जब तू 16 यूर तक फास्ट करिए तब तो दही वहाँ से शुरू करेगा खुरुई हार्मोन बनावे के अब खुरुई हार्मोन ना खाली नोड़ खाएगा हम लोग के लंबा चौड़ा मोटा पातर हो के ना हम लोग के खुरुई हार्मोन नोड़ खाएगा जहाँ दही में कटल पट टूटल हैगा कुछ ओके हेयर स्टाइल करे के हम लोग जहाँ कटल फटल रहे तो वहाँ पर लोग बहरे से देख लेला मैं भीतर में हम लोग के दही में कहाँ कहाँ कटे है कहाँ कहाँ फटे हैगा ये हम लोग ना देखेला जोन मनाए लोगन वेजिटेरियन हैगा तो उस सबके भी आराधक करेला कि प्रोटीन गब्रुक करो मार तू मांस मछली ना खाओ है तो आप सादा गब्रुक करो नोटे गब्रुक करो प्रोबेर दिस अलस टू वरफंगन सो वेल मोगलिक हम लोग के देह में फूडिंगस्टफन नोडिग हैगा दिस दैट इज द फूडिंग एग्लिक अस इट गाट ओम सुगरसिकते टू फोरकोमन द मनीर वारोप यू इट ईट वनेर यू बिगिन एंड वनेर यू एंडिगट maar ook wat je eet en wat je niet gebruikt. Tuurlijk is het ook aangeraden dat je voldoende rust hebt. Want hem ook de hele tijd rust behoort belangrijk. Je hebt ik om 60 jaar gehad, dan heb je 15-20 baristische persoon op een jinnige soetel. Weet u dat, wat het allemaal betekent? Het betekent heel veel, want rust hebben we nodig. Wat naast hem het nodig is. Je hebt gewoon 27 jaar, dan is zeker 9 tot 11 jaar, 9 tot 11 jaar op een jingieke soetel. Dus daarom is hij, rust is belangrijk. Maar ook er staat, mooie rust kan je, of krachttrainingen kan je. Krachttrainingen, jahi kan je, kan je kardien, hem lukt het dehi mee, je hem lukt het leeftijd, jahi hè, dan hem lukt het dehi, met gudda jon bole hè, u inslinken hoe hè, of पातर चमरा होए जब हम लोगों के गुद्दा कमती हुई दही में तो फरब्रांडिंग भी कमती हुई बार दूर भोजन में ध्यान न लगे है खाना पीना में मन न लगे है हम लोग इनके चाहिए फलदुंद खाना पीना करे के वही के मारा हम लोग कभी चाहिए क्राफ्ट ट्रेनिंग करे के जाने कि वो जो खाना पीना हम लोग के भीतर चाहे वो मोई से अपखनोम हो जैसे हम सेलवन बने हैं जो सेलवन के अरे बखेन फन प्रोग्राम बोल लेने का वही के मारा हम लोग के चाहिए नेचर से अपन खाना पीना करे के बवेकिंग रेस्ट samen met de intermittent fasting. Dus dit is zo'n beetje waarmee je eigenlijk je suikerziekte kan voorkomen als het in de familie voorkomt. Dus familie met sukruke bemari voor AWE, dat is een levensstijl leja. Dit noem je een gezonde levensstijl met de aspecten kuntje kuntje jaren kikken. en dan voorkom je suikerziekte helemaal. En dan zal ik jullie van hieruit weer groeten en dan... Mijn naam is Nisha Sanchit Jagdeo. U kunt mij ook een app sturen, namelijk op het nummer 88-15-990. Belt u alstublieft niet erop, maar stuurt u een appje. En u kunt me ook volgen op mijn Facebook, Nisha A. Sanchit Jagdeo. Dat is mijn pagina waar ik alles behandel. Dank u wel en fijne dag verder.
1: ये देवी जी को मैं खास करके फिर से हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं जैसे आपको मालूम है शनिवार 1 अक्टूबर 2026 बेस्ट लेक्चरर समरी साथियों और 2 और 3 के दरमियान शर्मा राजकुमार रौली मोहन जो आकर और यहां सुनाम के समाचार जो कुछ ना कुछ बतलाता है मैं हमेशा उनको यही कहता हूं Dank u wel, bhai Rolly Mohan ji, apna kimti samay nikal kar, jaise bhai harik ki samay jo hota hai, kimti hota hai na, harik ko apne zindagi apne tarah se di rahe, phir bhi ye samay nikal kar, aur ye samachar sunata hai, batata hai, sunam ke halat saptah mein. एक बार शनिवार को और 2 और 3 के दरमियान तो उनकी कार्यक्रम अभी आप सुनेंगे हमारी दोस्तों और जो 18 मिनट बाकी है अभी जो है 2 बजे में तो अभी आप उनकी प्रोग्राम सुनेंगे और मैं तो आपका सेवक श्याम पूरन हूं मेरे तरफ से आपको शुभ वीकेंड गसेखंद मुगेदा यूं ही यही मैं कह सकता हूं नजासी न कम हमारी साथियों और जो जाकर अपने ख्याल रखना पर स्कूत ऑफिशियल गसेखंद दा मोई वीकेंड है

कांवर यात्रा के अवसर पर हर एक को बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन जो है, जैसे आपको मालूम है, सावन का महीना है और कांवर यात्रा बहुत जोर शोर से हमारी सनातन धर्म के लोग जो ये पर्व को मनाते हैं, जाकर भगवान हर हर महादेव भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करे। Dus 8 minuten voor over 2 hotela hai. Fahun Hindustani Radio hai. Aur abhi aap sunenge Sirman Rajkumar Rolly Mohan ko. Vigyapan ke baad mein.

Ja, beste mensen, hou er één voor. Één voor, hou er twee. Hoort je lachen. Eén voor twee, hou er door. Tien, door wat je gaat. Hou er iets. Je iemand lebt die prettig zijn niet waar. Elke zaterdag komen. Ja, maar bij ja. Rajkumar Roli Mohanji, zijn naam ze, ik denk zijn naam ze, Jaakar Jaha, Hamlogo Ko, Aur Jaha, Kiasuna Tea Kwaliteit, zijn naam ke Halat, Aur Rajneti, Janeki. राजनीति के क्षेत्र पर जो सुनाम के हालात है उसके बारे में बतलाता है हम अपने तरफ से श्रीमान राजकुमार रौली को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और अभी कुछ घड़ी के अंदर में उनकी प्रोग्राम आप सुनेंगे आकर बतलाएंगे और जो सुनाम के राजनीति यानी पॉलिटिक और हालात है उसके बारे में और सप्ताह बार वीकलेक्स शनिवार को तो से दो और द्री एल के साथ रख दो और द्री के दरमियान उनकी प्रोग्राम आप सुनते हो

0: ये मधुर संगीत जो है, और इस बार बंदनी फिल्म का नाम, बंदनी फिल्म का नाम है, उन्हीं फिल्म से निकाला हुआ गीत चल के सुनते हैं।
1: The Heart of a Million, Mighty Mukesh जी।

हमारे दोस्तों कैसे लगा ये नखमार जो है दिल के छू लेने वाली ना, आप कहते हो मैं भी कहता हूँ यही बात। और कार्यक्रम में ये खास नंबर के बाद जो है अभी एक श्रीमती ने फोन किया आपको, थैंक यू वेल आपको तार करने के लिए और तारीफ करने के लिए इस प्रोग्राम को मुफरो, और आपके नाम नहीं लेना है, ये यूँ ही कहे आप, मैं तो खुद नहीं जानता हूँ कौन हो आप, लेकिन आप जो बताए तारीफ किए, थैंक यू वेल, थैंक यू वेल फैन मेरा। और कार्यक्रम में फिर भी कुछ दर्द भरी नगमे आज के प्रोग्राम में मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, कुछ पुराने यादें आते हैं ना और नगमा सुनते हो, और जो मैंने कहा ये सुरीले गीत जो है और सुरीले यादें में जो है ये संगीत जो है इस बार

और यही तो कहता हूँ, सुनहरे यादें जब के उभर आते हैं और मधुर संगीत हम आपके लिए जो प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ दर्द भरी कुछ प्यार भरी नगमे, और आज के कार्यक्रम में आप ही की और गुजारिश पर ऐसा ही नगमे मैं चला रहा हूँ। इसमें से एक और सा हो जाता दोस्तों, और ये मैं सोच रहा हूँ कि आप खुश होंगे, खास करके सूरीनाम के लोग जो हैं।

फिल्म का नाम माय लव इसी फिल्म से निकाला हुआ ये गीत जो मैंने आपके लिए और प्रस्तुत किया हमारे प्रिय दोस्तों, जैसे मैंने आपसे यादें जो है याद उभर आती है जबकि और मधुर संगीत पुराने नगमे आपके लिए प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। और जो है ये

तो दोस्तों ये था और है खास करके वही शख्स, जानते हो ना, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आवाज जो है और गोल्डन सोना की तरह आवाज इनकी। लेमन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद।

और मेरी भैया जो है और एक कार्यक्रम में साथ दे रहा है, ये खास जो है और भैया डंकवेल नॉक्स के बहुत से आपको और धन्यवाद मैं दे रहा हूँ।

तारीफ ही करता हूँ ऐसे प्यार भरी नगमा को, और यही कहना है कि न रास्तों ने साथ दिया न मंजिल ने इंतजार किया। दोस्तों न रास्तों ने साथ दिया न मंजिल ने इंतजार किया, मैं क्या लिखूँ अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। दोस्तों तो मुकेश जी ये महान कलाकार जो है द हार्ट रॉप ऑफ मिलियंस, माइटी मुकेश जी। जो कहने वाला है सुनो, आप ही के नाम वाहन है ना, तो डरने को क्या बात।

Μερτσάτιο. Γέχει το χεφάχο, ναι. Είναι στάνι. Ράδιο. साथ आपको कभी और आपके साथ ये कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों क्योंकि ये जहान ये संसार ये सृष्टि प्यार ही से है ये बताइए आप खुद

और यही कहना है मेरा इसी पल इसी घड़ी में, और ये वक्त जो है कि आप सलामत रहो, खुश रहो। आप ही से कहता हूँ कि न दिल में बसाकर भुलाया करते हैं हम जो है, न दिल में बसाकर भुलाया करते हैं, न हंसाकर रुलाया करते हैं। कभी महसूस करके देख लेना, हाँ कभी महसूस करके देख लेना, हम जैसे तो दिल से रिश्ता निभाया करते हैं ना, यकीन मानो। और आप ही से जो कहता हूँ

शब्दों में याद दिलाते हैं, एहसास भी दिलाते हैं। प्यार में ऐसा होता ही ना, शब्दों से नहीं लेकिन एहसास दिलाओ। बिना कहे एक दूजे समझ जाए।

कितना हजार बार कसमें खाऊं और खास जो है वादा जिंदगी भर के निभाने के लिए और साथ देते शब्दों में कहते हैं एहसास दिलाते दिलाते फिर भी जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही तो मिलता है दोस्तों। और मैं जो कहता कहने वाला हूँ आपसे कि आप ही से कहता हूँ ना, यकीन मानो आप ही से कहता हूँ, रेडियो सुन रहे हो तारक तेरी आरजू तो है पर बता नहीं सकता। आप ही से कहता हूं यकीन मान लो, तेरी आरजू तो है पर बता नहीं सकता, खुद की कहानी दुनिया को अब सुना नहीं सकता। होश में था तेरे साथ में, अब मदहोशी में तेरे साथ भुला नहीं सकता। आंखें कुछ इस तरह से नम है, हाँ आंखें इस तरह से नम सी है कि चाहे अब खुदा भी सुना दे, हाँ खुदा भी सुना दे लोरियां, वो मुझे सुला नहीं सकता क्योंकि प्यार की बातें होते हैं ना।

वाह वाह, सागर से गहरा, आसमान से ऊंचा, ये प्यार है ना। इकरार करो, इशार करो, एक इशार एक इकरार, तो यूं ही और शब्दों में कहते हैं दोस्तों एक दूसरे को, और याद ये दिलाते हैं कि प्यार कितना उनकी गहरे है। मेरी यादों में तुम हो, या मेरी याद ही तुम हो, मैं आप ही से कहता हूँ, सवाल आपसे करता हूँ, जवाब आपको देना ही पड़ेगा ना, कि मेरी यादों में तुम हो, या मेरी याद ही तुम हो, मेरी ख्वाबों में तुम हो, या मेरी ख्वाब ही तुम हो। यहां मेरा दिल बार बार मुझसे पूछता है एक ही सवाल, एक ही सवाल, मेरी जान, मेरी जान, मैं तुम हो, मैं तुम हो, या मेरी जान ही तुम हो। यूं ही ये सवाल जो है और जवाब आपको ही देना पड़ेगा ना। संगीत पे कह दो। मैं यकीन कर लूंगा

भैया हमारे साथी हो और इसी पल इसी घड़ी जो है और मैं आप ही से ये अर्ज जो कर रहा हूँ, अर्ज क्या करते हैं हम कि है कि तुम मेरी चाहत हो, कोई तुम्हें चाहे क्यों, कि तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों, कि तुम मेरी आईना हो, कि कोई तुम्हें देखे क्यों, कि तुम मेरी दुआ हो, कि कोई तुम्हें मांगे क्यों,

यह आवाज जो है कुमार सानू जी की ना। प्राकृतिक कहता हूं मैं, मधुर संगीत आवाज भी, एहसास किया क्या होता है, प्यार ने खुशियां आनंद

0: το εισέλιε το καρταού. Αό μίλκερ ντούνλε κοϊ βαγιά εκ χωνίκι. आओ मिलकर ढूंढ लें कोई वजह एक होने की. यूं बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे लगते हो ना हम. बताइए आप ये जो है सवाल करता हूं मैं, आप ही के ऊपर जवाब छोड़ देता हूं.
1: हां, सुनहरी यादें जो है दोस्तों, पुराना यादें. तो क्यों ना हम वैसे तो, और ये सुनहरी यादें जब है तो हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं एक दो. और कहते हैं कि मधुर संगीत दोस्तों, मधुर संगीत ये सुनहरी यादें, और जो है इसमें से एक ये मैं आपके लिए चलाने को जा रहा हूँ. चल के सुनते हैं.

0: तो हमारे सुनने वालों, यहाँ से फिर से एक बार आप सुनेंगे एक और सा शेर, जो ये महान कलाकार है हमारे प्रिय सुनने वालों, ये कलाकार जो है गुलजार साहब ने जितना गज़ल जगजीत सिंह ने गाए हैं इन्हीं के लिखा हुआ है। तो आज के प्रोग्राम में उन्हीं के एक शेर मैं आपके लिए सुनाने जा रहा हूँ, और वो तारीफ है आपकी आँखों की।
1: तेरी आँखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफ़ुक, तेरी आँखों से ही बंद होती है ये सीप की रात। तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी, पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से जरस की जले नमनाक सदा, और झुकती हैं तो बस जैसे अजां खत्म हुई है। तेरी आंखें, तेरी ठहरी हुई गमगीन सी आंखें, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है सच्ची, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है ये हयात।
0: तेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, और आपके आंखें के बयान तारीफ करते हुए ये खास शेर गज़ल आप श्रवण किए, और प्रोग्राम में अगला सनम्बर यहाँ से ये सुनेंगे आप चल के। मैंने लिफल इस्तरार से आप साथ दे रहे हो ना, मैं तो आपके साथ हूँ और नहीं छोड़ता हूँ। और शेर शायरी जिन लोगों के पसंद है बेस्ट में ऐसे सुनते रहना, क्योंकि इस बार शेर गुलजार जी की आवाज़ में आप ये खास शेर सुनेंगे, गौर से सुनना।
1: बस एक ही सुर में एक ही लय पे सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी, फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी, हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं, थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म डूबान जल रहा है।
0: कैसा था ये शेर हमारी प्रिय दोस्तों प्रिय सुनने वालों लिफो मैं से, और आप ज़रूर बतला सकते हो कैसा था। फिर भी आगे के प्रोग्राम चलाना है ना, तो आप ही के साथ मिलकर ये खास नंबर हम पेश कर रहे हैं। चल के एक ही दम सुनते हैं ये खास हमारी प्रिय सुनने वालों प्रोग्राम में एक शेर मैं आपके सुनाने जा रहा हूँ, आप ही की स्टेशन रेडियो राधिका के माध्यम से सुनेंगे ये फनकार जो है गुलजार जी साहब, गुलजार जी की आवाज़ में।
1: और डायरी में ये हैश्ट्री पूरी भर गई है, भरी हुई है जले बुझे अधकहे ख्यालों की राखबू से, ख्याल पूरी तरह से जो कि जले नहीं थे, मसल दिया या दबा दिया था बुझे नहीं, वो कुछ उनके टुकड़े पड़े हुए हैं, बस एक दो कशी लेके कुछ मिसरे रह गए थे, कुछ ऐसी नज़में जो तोड़कर फेंक दी थी इसमें धुआं ना निकले, कुछ ऐसे अशआर जो मेरे ब्रांड के नहीं थे वो एक ही कश में खांस कर एशट्रे में घिस के बुझा दिए थे। इस एशट्रे में ब्लेड से काटी रात की नब्ज से टपकते सियाह पत्रे बुझे हुए हैं, छिले हुए चांद की तराशें जो रात भर छील छील कर फेंकता रहा हूं, खड़ी हुई पेंसिलों के छिलके ख्याल की शिद्दतों से जो टूटती रही हैं। इस एश्ट्रे में हैं तीलियां कुछ कटे हुए नामों नंबरों की, चलाई थी चंद नज़में जिनसे धुआं अभी तक दिया सिलाई से झड़ रहा है, उलट पुलट के तमाम सफ़ों में झांकता हूं कहीं कोई टुर्रा नज़्म का बच गया हो तो उसका कश लगा लूं, तलब लगी है यह एश्ट्रे पूरी भर गई है, यह एश्ट्रे पूरी भर गई है।
0: तो आज के प्रोग्राम में ये खास शेर मैंने आपके सुनाए, और ये जो है फनकार और विशेषज्ञ दस कुंद खुबदीत खबीत बेस्टमैन से और गुलजार साहिब की आवाज़ में एक खास गजल शेर सुने। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए ये खास नंबर हम आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ।

0: प्यार के बात होते हैं ना, जब प्यार के बात होता है तब एक रिश्ता के बात होता ही रहता है, रिश्ता के बात होते हैं हमारी। और दोस्तों, हर दिल का एक राज होता है, हर दिल का एक राज होता है ना, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर हर किसी की, हर किसी को अपनी पसंद पर जो नाज होता है।
1: हाँ, मैं देखता हूँ दादी, मेरे साथ आइए।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ फॉरगेट इट।

हाँ हमारे दोस्तों, यही तो जिंदगी है। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जियो जिंदगी कुछ इस तरह कि जब भी आपसे कोई मिले तो उसे लगे बस यही जिंदगी का सबसे हसीन पल जो है।

0: और ये जिंदगी की सफर में प्यार मोहब्बत के दरमियान महफिल सजती है, उठती है, तो यूं ही महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है, मिलन ना सही जुदाई तो मिलती है। कौन कहता है कि प्यार में कुछ नहीं मिलता, कौन कहता है ये बात कि प्यार में कुछ नहीं मिलता, वफा ना सही बेवफाई, हाँ बेवफाई तो मिलती है।
1: उनके खास फैन हैं ये देवी जी और उन्हीं के नाम से हम चलाते हैं खास नंबर, जो है खास होता है ना, हर एक कोई आप भी खास हो।
2: बहुत सुंदर था मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाव ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाव सबका हीरो बन गया।

Waar we gaan elkaar. Speciaal voor onze enige. Over Jenny, over Haskerke Arti, haar Jenny Arti, over Jaker Johe, dekta humai, die logon is nummer ko, pasende karbeti irene hai, haar doston, over Samilker, un logon ke bahut hi pyar ke saat, aske karikle me, ye jo mai aap ke liye prasut kia. तो दोस्त आप खुश हो यूं ही आप बतला सकते हो अगर आप चाहे तो यूं ही बतला दीजिए कि कैसा लगा ये हमारी जो है पसंद और यूं ही हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का जिंदगी जीते चलो हंसकर जियो हमारी प्रिय और बेस्ट लिसनर्स हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का और दाप ही के नाम

लाइफ रिकॉर्डिंग है आप ही के नाम आप ही के हिट स्टेशन पाहुन।

सी कहेंगे वादे वफा करके क्यों मुकर जाते हैं लोग, किसी के दिल को क्यों तड़पाते हैं लोग। अगर दिल लगा कर निभा नहीं सकते तो फिर क्यों दिल को दिल से इतना लगाते हैं दोस्त। जो ही जानते हो आप।

नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की रहा था, खास करके ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की, ऐसा भी नहीं था कि मेरे प्यार में कोई कमी थी। मैंने दुआ भी मांगी, सज्दे भी किए और परहेज भी, आंसू भी बहाए और हाथ भी जोड़े, खास करके और सबसे बढ़कर खुद को अपने आप को बदल दिया दोस्तों, खुद अपने आप को बदल दिया। लेकिन होने को कौन रोक सकता है, होनी तो होके रहेगा ना, जो कर सकता था थी और मैंने सब किया। मगर जिसे जाना होता है वो चला जाता है दोस्तों, क्या से क्या आप कर डालो भी, लोग सुने और नहीं सुने उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं।

तो दूरियों से, दूरियों से फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, बात दिलों की नजदीकियों से होती है। दिल के रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो ना जाने कितने कितने और हजारों से होते हैं इस जिंदगी में, फिर भी क्या हम कहते हैं इसमें कुछ तो भी नहीं कर सकते ना। जाना हो तो जाओ, द ग्रेट जगदीप सिंह की आवाज है।

usne che batte. Ang apay ke nam. अब इसमें से एक गजल हो जाता है ना आज के कार्यक्रम में, इसी दरमियान पंजाबी भाषा में।

खूबसूरती की बात हो रहा है ना, कह दूं जरा से आपसे कि इंसान अच्छे अकल से खूबसूरत बनता है और अच्छी सूरत से नहीं, ये जानते रहना। गीत गजल के साथ शेर शायरी।

काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में आशियाना सिर्फ हमारा होता। लोग तुझे देखते हैं लेकिन दूर से, लोग तुझे देखते हैं लेकिन दूर से, पर पास से देखने की हक सिर्फ हमारा होता। एक फलक सॉन्ग है साहेब शौकत अली की आवाज है।

El 2-3 दरमियान रोली मोहन ने सुनाम से समाचार लिखे सुनाम की और ताजा खबरें सप्ताह बार एक बार खास करके प्रोग्राम उनके रहता है शनिवार की शाम को 2-3 के दरमियान। तो आज शनिवार है दोस्तों, ताजा खबरें अब ये तो है मालिनी अवस्थी की आवाज, फोल्क संग्रेस एक गीत है, फोल्क सॉन्ग भारत के ने

ये आप ही के लिए सब प्रस्तुत होता है और कार्यक्रम में अगला सा नंबर हम आपके लिए पेश करेंगे, लेकिन शेर शायरी मुझे बेहद पसंद है, आप को पसंद है ये बतला सकते हो। हमारी तार के नंबर 9435624940। कभी फुर्सत मिले तो सोचना जरूर वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था। प्रोग्राम में इस बार द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश, लाखों हजारों करोड़ों के दिल चुराने वाला मुकेश जी की आवाज में क्या सुनेंगे आप।

फाहुन यही है दोस्तों, और आप ये कार्यक्रम में ये नमूना सुने कि है सिद्दत तेरी इबादत में, है सिद्दत तेरी इबादत में तो मजहार को हिला के देखा, वरना दो जाम पी और मजहार को हिलते देखा। हमारी बेस्ट मैन से कार्यक्रम में

अब आपको यकीन आया ना, यही पर क्यों रहना, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। तो जरा से ये भी सुन लो कि कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है।

क्या मैं आपसे सच ही कहना, आप आजमाते हो और इसी तरह से आप जहां पे चुने हो सही जगह है। उदास ना बैठो, फिजा तंग करेगी। उदास ना बैठो, फिजा तंग करेगी। गुजरे हुए लम्हों की सजा तंग करेगी। किसी को ना लाओ दिल के इतना करीब, क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी हर अदा तंग करेगी। नॉन स्टॉप हिट सिलेक्शन आप ही की फेमस फाहुन के माध्यम से दोस्तों। तो यहाँ से पुराने दर्द भरी प्यार भरी नगमे और जो भी है इसमें से एक ये सुन लो जरा से।

क्या बात है हमारी प्रिय दोस्त, जो हम आपके साथ है नसीब में बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है, यकीन दिलाता है कि वो हमारा दिल है, यकीन दिलाता है कि वो हमारा दिल है, फिर ना जाने क्यों वक्त के साथ बदल जाता है।

ये दर्द भी क्या कमाल की चीज है, जब भी मिला अल्लाह से मिलने का मौका मिला। तो आगे के प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ से जरा से ये भी सुनो, गौर से सुनो, अच्छा लगता है शेर शायरी, इसी तरह से मैं आपसे बतलाता चलता हूँ और संगीत तो पेश होता है। मेरे आंखों में मत ढूंढा करो खुद को, पता है ना दिल में रहते हो धड़कन की तरह,

0: The man with the golden voice की आवाज में नंबर सुने ये duet song, यहां से ये भी सुन लो तो अगला सा नंबर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। सुन मेरी हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस उम्र भर इस बार।
1: हाय हाय हाय हाय,
2: हटो ना, क्या करते हो?
1: ओए ओए, पूछा जो प्यार क्या है,
2: ओहो,
1: शर्मा के मार डाला
2: जाजा,
1: तिरछी नजर से देखा

की शोडा की कमाल आप सुने। कलाकार दोस्तों की तन्हाई के लम्हात का एहसास हुआ है, तन्हाई के लम्हात का एहसास हुआ है, जब तारों भरी रात का एहसास हुआ है। आप चुने आप ही की स्टेशन जनता के आवाज फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन। कार्यक्रम में इस बार नंबर जो चलाएंगे, लेकिन ये सुन लो जरा से फिर से, वो जुल्फे जो हाथों से एक तरफ कर लेती हो आप, वो जुल्फे जो हाथों से एक तरफ कर लेती है आप, बेखुदा आंखों से दिल तक सफर कर लेती है आप। बादशाहों के बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज।

यही तो है आप ही की स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम आप सुन रहे हो। मेरे साथ मिलकर मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ। इश्क का तो पता नहीं, पर जो तुमसे है वो किसी से नहीं। दर्द भरा नंबर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, ये मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ। हम आप साथ मिलकर जो प्रोग्राम सुन रहे हैं कैसा लगता है आपको बताना है। हमारी तार को नंबर 9 6 3 5 6 2 2 6 4 यही है आप ही की रेडियो। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला हन जाने में, ये दर्द भरा नगमा। और चल के सुनते हैं, जानते हो इसे, बताओ कैसा है।

चीजें ठीक हो जाते हैं, चीजें ठीक हो जाते हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते।

से भुलाऊं कैसे, तेरी यादों को भला दिल से भुलाऊं कैसे। दिल तो है एक प्यार, नहीं मिलते तो सुनाते कैसे। मेरा मन, मेरा तन, मेरा जीवन, मेरा मन, मेरा तन, मेरा जीवन समाज की छाया है। मेरे पास कुछ भी नहीं अपना, मेरे पास कुछ भी नहीं अपना, जो भी है आप ही से पाया है। मैं कहां कुछ कर पाता, मैं कहां कुछ कर पाता, यदि आप सबका प्यार न मिलते। आपकी याद में रहकर बिगड़ी भी बन जाते हैं। ये जो समाज है, स्वराज्य है हमारा, मैं रहूं ना रहूं तुम सब करते रहना सहारा। प्यारे समाज सेवकों, कुछ देना है तो वचन देना। आप वचन देंगे, बोलो। मेरे समाज सेवकों, कुछ देना है तो वचन देना।

0: में लड़ाई झगड़ा बंद। बलों के लिए दाद बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है, बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है, वो आके भी गुजर जाती है। गम बहुत है प्यार भारी, गम बहुत है प्यार भारी है, और यही है जिंदगी हमारी। खेल का भी तो है अपना नशा, खेल का तो भी है अपना नशा, हमने बाजी जीत कर खुशी से हारी है। मिलो तो फूलों की तरह, बिछड़ो तो सुगंध की तरह। अंकुतलकार असब्लूमन एंड नेम ऑफ सैदा स्क्वेयर। धन्यवाद।
1: बेस्ट मेंसर ये था अखंड विद्वान श्री पूज्य पंडित दाता दीन। ये शुभ संदेश वो जो समाज सेवक है, अपना धर्म के प्रचार करता है, अपना कर्तव्य अपना धर्म निभाता है, और यही संदेश दिया कि ऐसा ही कुछ आप करते चलो और उसे से जरूर से आपके भी और समाज के भी कल्याण होगा।

निकल आता है आंसू जब मुलाकात नहीं होती, टूट जाता है दिल जब बात नहीं होती। तेरी जान की कसम मेरी जान, हाँ तेरी जान की कसम मेरी जान, तेरी याद ना आए ऐसी कोई रात जो जाकर नहीं होती ना।

महान कलाकार आशा भोसले जी, उन्हीं की कमाल। क्लासिक हिंदी सॉन्ग है हमारे साथियों, फिल्म का नाम तीसरी मंजिल। स्टार कास्ट इस फिल्म के शमी कपूर और आशा परेख,

अब इसीलिए जो कहता हूं कि सूखे फूल को तोड़ने वाला कोई नहीं, सूखे फूल को तोड़ने वाला कोई नहीं, टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई नहीं। कितनी मोहब्बत है उनसे, काश वो जान ले। हाँ हाँ, काश वो जान ले। अफसोस की बात, उसको बताने वाला कोई ही नहीं।

और बता दो जरा से कि जिंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है। मेरी जिंदगी तो एक अधूरी कहानी है, चाहते तो मिटा देते हर दर्द को, हाँ चाहते तो मिटा देते हर दर्द को, मगर ये दर्द ही तो उसकी, हाँ हाँ उसकी आखिरी निशानी है।

अब इसीलिए एक वादा किया था, एक वादा निभाने के लिए, हाँ एक वादा किया था, एक वादा निभाने के लिए एक दिल दिया था, एक दिल पाने के लिए, लेकिन उसने मोहब्बत सिखा दी और कहा मैंने तो प्यार किया था, मैंने प्यार किया था तुम्हें आज माने के लिए हमारी साथियों, और ऐसा गलती कभी नहीं करना।

ये इश्क वाले ये इश्क वाले वफा की कीमत क्या जाने, बेवफा है ये गम की मोहब्बत। हाँ क्या जाने, मिलता हो जिन्हें हर मोड़ पे नया हम सफर वो सच्चे प्यार की कीमत क्या जाने।

पद्मश्री कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल, इन दोनों की आवाजों में कि मेरे दिल को अब किसी से गिला नहीं, दिल जिसे भी चाहा वो मिला नहीं। बदनसीब कहूं या वक्त की बेवफाई, फूल जो लगाया वो कभी भी, हाँ कभी भी खिला ही नहीं।

Așa, bosle. Unde ne că bate, ne? एक कलाकार की कहानी यही है, वो हमेशा साथ है, मरहूम कभी नहीं होते।

बड़ी बड़ी बातें करते हो वैसा साथ निभाओ को क्या, बुलाने पर तो सब आते हैं, तुम याद करने पे आओगे क्या। गलती कर दो, गलती कर दूं नादानी में तो तुम समझाओगे क्या। लाख कमियां निकालिए, हाँ लाख कमियां निकाले ये जमाना, तुम फिर भी अपना बनाओगे क्या, बताओ आओ चल के।

चुप है लेकिन चांद खामोश नहीं। कैसे कहूं कि आज फिर मुझे होश नहीं। इस तरह डूबा हूं तेरे मोहब्बत की गहराई में कि हाथ में जाम है, हाँ हाथ में जाम है, लेकिन पीने का हमें जो होश ही नहीं।

ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम, किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है बहुत बदल गए हैं हम।

आती है तो कभी आंखें भीग जाती है। आपकी याद आती है तो कभी आंखें भीग जाती है, तो कभी यादों में रातें बीत जाती है। कोशिश तो बहुत की पर मगर यही तो है, यादें तो यादें है ना, कभी हम हार जाते हैं और कभी ये यादें जो है जाकर हार जीत का खेल में जीत ही जाते हैं।

आप भी बोलिए कैसा लगा आपको, आनंद, ध्यान, सुकून। यही मैं सोच रहा हूँ कि मत इंतजार करो वो पल, बूढ़े हो जाएंगे तब आप हनुमान चालीसा को पाठ करेंगे, तब तो देह में शक्ति नहीं रह जाएगा। दोस्तों जो करना है आज ही करो, जो कल करना था आज करो।

0: जानते हो ये सनातन धर्म के लोग जो है और पूजा पाठ भी करते हैं जैसे, और कोशिश करो अपनी जो हम लोगों के ग्रंथों ने सिखाया है उसी राह पे चलने के लिए। लहसुन प्याज छोड़ो, मदरा मांस छोड़ो दोस्तों, भजन भक्ति करो, अपना कार्य करते चलो, देखो क्या होता है, चमत्कार ही चमत्कार होगा ज़रूर से दोस्तों। हमारी दुनिया में, सृष्टि में, संसार में जो है धीरे धीरे धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और जब हमें शाकाहारी होना चाहिए तो कहाँ मांसाहारी हो चले हैं दोस्तों, क्या बात है, कैसे उसे और एक उसमें तुरुख के होगा। और हम आपको बतलाते हैं, याद दिलाते हैं कि वही मुते ये मुसाइड वाची बैंत बेस्त लो इस रास्त ना कि दुनिया के पीछे दौड़ो, दुनिया के पीछे दौड़ेंगे दुनिया जो करता है तो उस पर कभी नहीं और सुकून होगा, खुशी आपको मिलेगा। यू ही और आपको याद दिलाता हूँ, ये कार्यक्रम आप ही के नाम प्रस्तुत होता है, मोय मोय दख बेस्त लो इस रास्त, और कोई ऐसे भाषण में दे ही देता हूँ और यूं ही आपको याद दिलाता हूं। आरती सुखलाल डंकवेल डंकवेल डंकवेल नोकस के डंकवेल फोर यू अतैसी मुफ्रो आशा पूरन यू फहरत बदांग भैया नारायण नारायण जी। हाँ शीतल आपको एक शुभ दिन इधर इन दो अप वेलकम इधर ओ जैसे भी आप हो और हमारे साथ दे रहे हो, खुशी हौसला मिलता है मुझको और ये प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए, जैसे हमारी भैया चांद रघुनाथ भी प्रोग्राम सुनते हैं हमसे, तो हम हर एक को एक कितने नाम मैं लूँ यूँ ही तो देख रहा हूँ मैं हाथ करके, हर एक को एक शुभ दिन कहता हूँ और चल के साथ में मिलकर जब अपने लिए कुछ और संगीत मैं आपके लिए चला रहा हूँ इस वक्त यही सोचते हुए कि आपको पसंद आता हुआ होगा, नहीं पसंद तो बताइए क्या मुझे चलाना है, तार के नंबर तो आप जानते हो, लाइव ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। यह कार्यक्रम हमेशा जो मैं अपना कार्यक्रम चलाता हूँ ये अपन मंच नहीं है, ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम है, जैसे कि आपको मालूम है सोफन तक 365 47 जबकि
1: लड़का हमारी
0: कलाकार जो है देवेंद्र सिंह शिवनाथ

हमारा ही कलाकार है दोस्तों, शेन चेंजेस। इसके नाम है देवेंद्र सिंह शिवनाथ। वाह वाह ढोल।

वाह वाह वाह, कलाकार है, तारीफ तो करना ही चाहिए ना, और कलाकार को क्या ही चाहिए, उसी तो है तारीफ, और उसी के इंतजार करते रहते हैं। यहाँ मैंने आज के कार्यक्रम में ये सुनाए जरा से और से कलाकार जो है कोशिश करते हैं, और ये जो इस बार देवेंद्र सिंह शिवनाथ के बाद शिवम राजाराम, उनकी कमाल जरा से सुन लेते हैं, शिवम क्या बतलाता है। साथ हो आप, थैंक यू वेल

अपना ही कलाकार के कमाल आप सुने दोस्तों, वो कम तो नहीं है एक दूसरे कलाकार से फिर भी। और हमारी जो है तरीका जो है अपने अपना तरीका होता है संगीत की, कलाकार जो है और कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना मतलब प्यार करते हैं दोस्तों, ये कभी ज़रूर करके देखो, करके देखो, कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना मतलब प्यार करते हैं। तो जानते रहना बिना मतलब तो यूं ही नहीं हो सकता है किसी वक्त। लोग कहते हैं सब कुछ जो है जितना कुछ है और बई वत हो तो वत बई, और ये कहते हैं लोग प्यार में प्यार यूं ही होता है, लोग जो करते हैं प्यार जानते हैं जिसके साथ जो गुजरे हैं वही बतला सकते हैं खुशी के बाद, यही चाहते हम क्योंकि प्यार जो है उसमें सुकून मिलना चाहिए दोस्तों, सुकून खुशी मोहब्बत प्यार मोहब्बत जो है दुनिया में इसी पर दुनिया है, दुनिया प्यार भी मोहब्बत से तो है दोस्तों। और जो है पल जिंदगी के जीते चलो, और ख़ास करके संगीत, हाँ संगीत सुनते रहो। और यूँ ही एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये रेडियो फाहून जो है दया भी प्लस राजियो है इस दुनिया में यानी कि हॉलैंड देश में, ये अपने घर पर सुन सकते हैं। अगर आपको दया भी राजियो है तब नहीं है तो आप नहीं सुन पाएंगे, इंटरनेट के ज़रिए से आप सुन सकेंगे ज़रूर से, लेकिन ये बात ये गुनाह करते चलो, चुगली चाय तो नहीं करना चाहिए ना, लेकिन लोगों से बतलाते चलो कि एक रेडियो फाहून है जो आप सुन सकते हो उस पे दया बे पर आप एगो खरीदो दया बे प्लस रेडियो डिजिटल रेडियो तो सुन सकेंगे। दिस इमख वेल इमख व मै मख वेल चुगली चाय दिस इमख द डोर पेल एंड यू फ्रेंड कैन से बेस्ट लो इस रात से जो है रेडियो फाहून जो है, और इसे इंटरनेट के जरिए से आप सुन सकते हो तो अपनी टैबलेट अपने पीसी अपने मोबाइल पर जहाँ भी आप चाहो यूं ही फाहून एफएम पुनेदैनल जो है ये सारी सिस्टम में दुनिया में हर जगह ये सुन सकते हो। आपको एक शुभ दिन कहता हूँ दोस्तों, लाइव खनित और ये लाइव आपके लिए प्रस्तुत जो हम कर रहे हैं कार्यक्रम में हर एक को जो जिस तरह से भी साथ दे रहे हैं वत मुँह देख सक तारीफ करूँ यूं ही ज़रूर से सब खोजा है युक्सुक वर्द मिलते नहीं मिलता है। अगर आप जानते हो एक तो ज़रूर आप मुझसे बताइए कि कैसे मैं आपको तारीफ करूं, कैसे करूं। अब ये कलाकार जो ये क्या चाहते हैं ये सब उसी को तो चाहते हैं दोस्तों। और सविता सिंह ये कलाकार है त्रिनिदाद और टोबैगो के, हमारी लोकल कलाकार है। मैं आज के करके मैं जैसे मैंने आपसे बतलाए और प्रस्तुत कर रहा हूं, चला रहा हूं, तो सविता सिंह ये एक बच्ची है और हाल ही में अपने और ये संगीत के कलाकार कोशिश करती है, चल के सुनते हैं आज इन दिनों तुम्हें दर्शन पीड़ित के धुन जो है

तो यूं ही आपसे कहता हूं ये का आपको और कहना है कलाकार को। दोस्तों हमारे त्रिनिदाद टोबैगो के कलाकार है, खास करके त्रिनिदाद के ये कलाकार है और अपनी तरीका से तक जो है और प्रोग्राम में हमारी जो है तरीका और एक इमिटेट किया लता जी के गाया हुआ गीत आपको सुनाइए। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला बैठा बुरा नहीं लगता, आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं, कोई बात करे तो भी ठीक, कोई ना करे तो भी ठीक। दोस्तों और लगता ऐसी है और ये जो है आपके लिए कलाकारों की तारीफ करते हुए संगीत जो हम आपके लिए पेश कर रहा हूँ, तो इस बार फिर से हाउ जैसे मैंने कहा इसी तरह से आप एक हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन फावन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ 9 से 5 तक के माध्यम से। और जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो, टेक केयर। राजेश शिवनंदन।

यही तो है रजेश शिव नंदन हमारे दोस्तों और हर कुछ प्रोग्राम सुन रहे हो डंक वेल खास करके मफरो नालिनी मफरो रोशनी बेकारू बेया बत्तेश्वर और खास करके मफरो उषा दुर्गा सिर्फ मफरो हेर कहा गया दोस्तों मैं हेर को ढूंढ रहा हूँ चल के जरा से ये मैं आपको सुना दूँ इस एक ही दम इसी पल अगर आपको इतराज ना हो तब फिर से एक बार वही खास करके जो है और सविता सिंह एक ऐसा नंबर भी गाया है चल के सुनते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो से त्रिनिदाद से दोस्तों सविता सिंह आप ही के हिट से बाहुन के माध्यम से

आपसे कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों, इस गीत के बारे में। वे देवी जी ने खास करके सविता सिंह, ये कलाकार संगीत की, और आपके लिए सुना है अपनी आवाज़ में, अपनी खास करके लिखे हुए नंबर, और आज के कार्यक्रम में मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए। तो मेरा कहना, मेरा सोच, ये विचार, अच्छा गलत आप भी बतला सकते हो। अगर अपना पहचान आपको बनाना है तो जब तक आप इमिटेट करेंगे तब यूं ही उसमें आपके बीत जाएगा समय, वक्त है, सीखेंगे ज़रूर, लेकिन पहचान जो अपना आप बनाना है, जैसे आप मुकेश जी हैं, रफ़ी साहेब, पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी साहेब, लता जी, ये सुरों की देवी, ये कलाकार अपने पहचान बनाए हैं, और उनसे बेहतर तो आप नहीं गा पाएंगे। अगर चाहे 1,00,000 बार चाहेंगे तो कभी नहीं गा पाएंगे। जो है रफ़ी साहेब वो रफ़ी साहेब रह जाएगा, मुकेश जी मुकेश रह जाएगा, लता जी लता रह जाएगा। जैसे मन भैया राजेंद्र वन का, उनकी आवाज़ जो मिलती जुलती है, और गोल्डन वॉइस तलत महमूद से, तो वो तो आवाज़ मिलती जुलती है लेकिन वो नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे भाई सुरेन जो है भगवान दीन, उनकी आवाज़ दादा हेमंत कुमार के साथ मिलती जुलती है। तो मैं क्या कहता हूँ यूँ ही, और आपको समझाना सिखाना कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपना विचार जो है मैं इसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। हमारे प्रिय मित्रों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 घंटे लगातार हमारी कलाकारें जो है, खास करके कलाकार आकर यहाँ पर अपने कार्य को करते हैं, जो है, और हर एक को मेरे तरफ से हर एक को धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। अपने अपने तरीका आकर ये रेडियो को चलाते हैं दोस्तों, समय अपने लेकर, और ये देश व लेने मैं कहता हूँ आकर आपके साथ देते हैं डायरेक्टली। और जो है हमारी श्रीमान कुमार घिराव भैया, शिव चेतन खास करके अपना कार्य भी करते हैं दोस्तों, और शुरुआत जब से रेडियो और उठे हैं आज दिन तलुक, और जैसे कि हमारे कुलेखा जितने हैं, रजेश बदलू, दिलप, रामादीन, कितने हैं दोस्तों, किस किस के नाम नहीं लूँ, अगर किसका नाम नहीं लूँगा तो खास करके नाराज़ हो जाएगा, सोचेंगे कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये बात नहीं है। और ये वाहन पे आप क्यों नहीं ना हमेशा, और 24 घंटे लगातार जब अपना रेडियो को ऑन करेंगे आप, तो ज़रूर से हमें पाएंगे। खलूफ तुम्हें एक बार कोशिश करो और लोगों से बतलाते चलो को दया बी प्लस जो रेडियो वाहन है, अपने मोटर कार इन दिनों आप खरीदे हैं तो उनमें ज़रूर दया बी होगा, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी जो है आने वाले दिनों में सभी रेडियो जो है दिया भी डिजिटल हो जाएगा। हमारे प्रिय मित्रों दोस्तों, शेख दाख मैं आपको कह रहा हूँ, और आगे के कार्यक्रम तो ज़रूर से रेडियो के कार्य करवाना है तो ज़रूर अवश्य आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमेशा जब आप चाहे। दफ्तर खुला रहता है प्रतिदिन, और सुबह में 9 से लेकर और शाम को 5 बजे तक दाखिल हमारे दोस्तों। तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए इस बार नंबर जो मैंने आपके लिए चुन रखा हूँ, और डकवेल अटेंसी जो आप फ़ोन करते हैं इंटरनेट के ज़रिए से, और यूँ ही कितने मैं देख रहा हूँ हमारी जो है फेसबुक पर सोशल मीडिया, आज एक दिन हो गया है दोस्तों, कहाँ पे उन दिन था कैसे सब कुछ अगर चाहते थे जानने के लिए तो आपको रेडियो सुनना पड़ता था, क्योंकि आज का दिन हो गया सब कुछ आप मिल जाता है इंटरनेट पे, जो आप चाहे वो मिल जाएगा ना। आप सोचो कितना जल्दबाजी में ये तरक्की ये दुनिया के हो रहा है, बर्बाद होगा या बनेगा, हम तो है जी रहे आज, और वतला तो अख्तर फुरों से कोमन दे तो कम से खेनेरासी बेस्ट लोसरास। हम यहाँ पर एक नंबर आपके लिए सुनाने चाहता हूँ, एक इमिटेट किया हुआ लोकल सॉन्ग है, और

हाँ दोस्तों, हमारे ही कलाकार है किरण केदार की आवाज है। और कलाकार तो इसी तरह से होते हैं ना, यू ही। और आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसी दरमियान कह दूँ अगर आपको इजाजत हो तो। और ये अपने बारे में मैं कहता हूँ, यूं ही शेर शायरी मुझे और मेरा आदत सी बन गई है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें थोड़ा से दर्द आपको ज़रूर से एहसास होगा। कफन मेरे सर से उतार कर खूब दीदार कर लेना, कफन मेरे सर से उतार कर खूब दीदार कर लेना, फिर कभी नजर नहीं आएगी वो आंखें, हाँ फिर नजर नहीं आएगा वो आंखें जिनको तुम बहुत रुलाया करते थे ना। अब यही तो बात है दोस्तों, जबकि ये जो कलाकार इस बार मैंने आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, कहते ही रहूँगा कि कलाकार मरहूम, मैं कभी उन लोगों के नहीं कहता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कलाकार जिंदा रहता है दोस्तों। यूँ ही मैं आपसे कहता हूँ और मेरा विचार ऐसा ही है, तो आपके विचार जैसे मेरा है। फिर भी इस बार नंबर जो है, अगर आप इनके नाम सुने होंगे, जानते होंगे, तो हम जब लोकल सॉन्ग्स आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें से एक ये भी है। बहुत जल्द हमें छोड़ के चले गए, नाम है अनिल भीम।

0: वाह रे वाह कलाकार, अपनी अपनी जगह हर एक कोई ना। अनिल भीम, उनकी आवाज कितना मधुर आवाज में, और खास करके आते हैं लोग इसी तरह से, और ये तोहफा हम लोग के छोड़ जाते हैं। ये संगीत होता है दोस्तों, संगीत के कलाकार, हर एक कोई कलाकार कला अपना कलाकार को प्रस्तुत करके, और कलाकारें अपना कला को प्रस्तुत करके और चले जाते हैं दोस्तों, चले जाते कहाँ, फिर भी उनकी कला जो है और हमेशा हम उसे सीखते जानते हैं और उसे मजा भी लेते हैं और सरफलक हो जाते है हमेशा के लिए ना दोस्तों। यही तो है खास करके जो हुई आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आगे पे चल के। एक जबकि मैंने आपसे कह चुका कि कुछ जो है लोकल नोमर खास करके हम आपके लिए प्रस्तुत करें अपना ही कलाकारों के, और जो है छोड़ दी सफाई देना, मिन्नते करना और मनाना दोस्तों, जिसको मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे आगे बढ़े दोस्तों, यूं ही चलो आगे, और जो है जेके जो चीज चाहे करते रहना, क्योंकि जो इस बार नंबर हम आपके लिए पेश करेंगे आप हैं कि हिट सेशन द म्यूजिक सेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से आपका सेवक शाम पूरन अभी आपके साथ दे रहा हूं, और हर एक को फिर से एक बार लाइव ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम जो है और हृदय से धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया कहते हुए इस बार स्टीफन धर्मपाल नाखसोंग इमिटेट
1: ना कन्हई आरे
0: आरे, और ये जनरल सॉन्ग जो है

अरे वाह, खास करके प्रोग्राम में ये खास सिलेक्शन अभी आप श्रवण किए हमारे सुनने वाले और आप इनकी स्टेशन हिट स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन हमारे तार को नंबर 3 5 6 20 20 फिर एडमिनिस्ट्रेशन नंबर जो है और यहाँ स्टूडियो में आप तार कर सकते हो अगर चाहे तो 3 62 20 77 आपको शुभ दिन दोस्तों और कार्यक्रम फाहुन की आप जो सुन रहे हो। हम जिसे प्यार करते हैं उसका गुस्सा नाराजगी सहन कर सकते हैं पर उसे बात किए बिना नहीं रहा जाता दोस्तों। यही तो प्यार होता है ना, प्यार इसी तरह से आपस में जो लोग करते हैं तो एक दूसरे के बिना नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है? लेकिन जो झगड़ा और होते जुदाई होते थे तो इसी में कितना आपको गम प्यार में खुशी मिल जाते, यही तो हम चाहते हैं। और अल्लाह ताला से परमपिता परमेश्वर यही अब दुआ करें आपके लिए कि किसी को गम ना मिले दोस्तों और प्यार में हर एक को सुकून खुशियां प्राप्त हो। हम जिसे प्यार करते हैं उसका गुस्सा नाराज़गी सहन कर सकते हैं पर उसे बात किए बिना नहीं रह जाता दोस्तों। तो यही और इजहार करते हैं और लोग बतलाते हैं कि प्यार करने में क्या क्या और लोग ने झेले हैं, क्या क्या मिलता है ना, और इसीलिए ये कहा है

पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब। दोस्तों बादशाहों के बादशाह सातों सुरों के बादशाह स्पेशल फॉर यू।

0: अब क्या करेंगे दोस्तों, प्रोग्राम आप सुन रहे हो, नाराज होकर भी नाराज नहीं होते, ऐसी मोहब्बत है तुमसे दोस्तों। क्या मैं कहूँ तो क्या है ऐसी मोहब्बत आपसे, कैसी मोहब्बत है आपसे। यूं ही ये कार्यक्रम फाहुन की सुन रहे हो और आज के दिन शुभ हो आपकी। मिले थे एक अजनबी बनकर कभी कभी मिले थे एक अजनबी बनकर, आज मेरे दिल की जरूरत हो तुम। आप ही से कहता हूँ और चल के यहाँ एक ही दम स्पेशल फॉर यू।
1: अब वो खुदा
0: रफी साहेब।

तो छुआ और खास करके फरिश्ता तरह आया, यही तोहफा हम लोगों को देकर गए हैं। रफी साहब दोस्तों, तुमसे लड़ने के बाद तुमसे लड़ने के बाद प्यार दो लोग आपस में करते हैं तो लड़ने के बाद याद और भी ज़्यादा आती है, ये कहते हैं लोग खास करके दोस्तों। और ये कार्यक्रम आप ही के नाम भैया चांद रघुनाथ जी आपके नाम, इस बार नंबर जो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, ती तुझे पता क्यों नहीं चलता कि मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगता, यूं ही कहते हुए और भैया चांद रघुनाथ कहती है और कह रहा है अपनी धर्म पत्नी घर के लक्ष्मी अर्धांगिनी से, ही से कहता है और चलते क्या कहता है।

तो ये खास दमरे प्रोग्राम में मैंने प्रस्तुत किया दोस्तों आप ही के नाम, जबकि भैया चांद रघुनाथ और प्रोग्राम में ये खास नंबर जो है अपनी धर्म पत्नी घर के लक्ष्मी अर्धांगिनी जो है खीस के लिए बहुत ही प्यार के साथ इस कार्यक्रम में फाहुन के माध्यम से। और आप भी ऐसा कुछ चाहते हो दोस्तों, यूं ही आप फोन कर सकते हो तार के नंबर 9 3 2 6 20 77 9 3 2 6 20 77 77। तेरी आवाज मेरी जरूरत, तेरी मोहब्बत मेरी आदत, तेरी खामोशी मेरी सजा, तेरी खुशी मेरी जिंदगी, ये कहता है हमारी भैया नारायण शीतल जी। नारायण शीतल के साथ हैगा उनकी और जिंदगी, उनकी जिंदगी घर के लक्ष्मी जो है अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी के मतलब क्या आप जानते हैं क्या है ना, आधा जिस्म जो है आधा आधा, एक एक हेल्फ और दूसरे हेल्फ। इसी तरह से आप एक जाते हो जब अपनी और पाँव में और जूता खरीदने के लिए तो देखते हो जानते हो क्यों एक बड़ा एक छोटा होता है, क्यों आपके हर एक चीज़ एक हाथ दूसरे हाथ से नहीं मिलती जुलती है। एक औरत के अर्धांगिनी इसीलिए कहते हैं कि आधा आधा ये जिस्म जो हमारी है उसी तरह से और बाँटा गया है आधा। और उससे जब संबंध बनता है, एक संबंध जीवन भर के लिए शादी होता है, विवाह होता है साथ में, तो 7 जन्मों के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए खास करके कसमें वादे करते हैं कि 7 जन्म तक ये साथ नहीं छूटेगा। हमारी प्रिय मित्र हमारी धर्म यही बतलाते हैं सिखाते हैं। और आज के दिन जो है कि भाई दोषण फिर अंत में तक ना जाने क्या हो गया है और इस जहान में दुनिया में, फिर भी जानते हो जब से दुनिया बना है और पति पत्नी के रिश्ता होते हैं इसी तरह से दुनिया आज तक कायम है। तो भैया नारायण शीतल और रीता शीतल इन लोगों के नाम से आज के शाम के प्रोग्राम में और आशुदात उक वेल द मुच वेल इफ इन वेलर

मुकेश जी की आवाज पसंद करने वाले हमारे भैया फफुरित उनकी है और हर कोई अपने अपने जो है फफुरित होते हैं दोस्तों हमारे भैया नारायण शीतल की और मुकेश जी उनकी उनकी फैन है खास करके और उनकी आवाज में खास करके आप के कार्यक्रम में उन्हीं के नाम से ये नंबर मैंने प्रस्तुत किया। और आगे में चल के इस बार जो है प्यार जो होता है दोस्तों प्यार हुस्न और सब कहते हैं प्यार मोहब्बत ये जिंदगी है ना लोगों कहते हैं लेकिन आप जे जानता जो प्यार किया हो जानता है प्यार क्या होते हैं दोस्तों खुशी हम सब मिलता है उसमें। और इसमें ये कहा गया है कि पलकों में आंसू और दिल में दर्द रोया पलकों में आंसू और दिल में दर्द रोया हंसने वालों को क्या पता रोने वाला किस कदर रोया मेरी तन्हाई का आलम वही समझ सकता है जिसने जिंदगी में किसी को पाने से पहले खो दिया। दोस्तों तो अजनबी जी प्रोग्राम सुन रहे हो आपको शुभ दिन और साथ देने के लिए फिर भी और ये जो है प्यार हुस्न होता है तो प्यार होता है और चल के सुनते ये खास सिलेक्शन हमारी भैया जो है मारही कुमार मारे के नाम से बहुत ही प्यार के साथ उनकी घर के लक्ष्मी अर्धांगिनी माला जी के लिए माला है और भैया कुमार के धर्म पत्नी घर के लक्ष्मी जो है तो भैया कुमार मारे की तरफ से माला के लिए प्यार ही प्यार के साथ।

फेंकते एक कदम जो है इसी फिल्म के से निकाला हुआ गीत मैंने आपके लिए चलाए, जबकि हमारे भैया कुमार मारही अपने घर के लक्ष्मी अर्धांगनी और माला के लिए बहुत ही प्यार के साथ आज कार्यक्रम में जरा से और यही कहता है हमारी भाई खास करके जो है और मारही जी कुमार मारही कहता है अपने धर्म पत्नी से, तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले कि थक जाए सारे वकील, कि थक जाए सारे वकील, मुझे जमानत ना मिले। आहा, कितना प्यार कहते हैं खास करके ये प्यार की नगमा आप श्रवण जो किए, और फिर से एक बार कह दूं हमारे भैया कुमार मारही की तरफ से अपने घर के लक्ष्मी और माला के लिए बहुत ही प्यार के साथ। दोस्तों ये मालिक है खोज स्वीट फिश की मालिक जो है और आज के कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं। जितना तुम्हें सोचा भी नहीं मुझको, हाँ जितना तुमने सोचा भी नहीं मुझको, मैंने उसे भी ज़्यादा मोहब्बत की है तुमसे, फिर से कहता है यही हमारे खास करके भैया जो है और खास करके मारही कुमार मारही अपने माला से। फिर भी आगे के कार्यक्रम चल रहा हूँ मैं और घड़ी की तरफ मैं देखूँ तो घड़ी तो वक्त चल रहा है गुजर रहा है दोस्तों, फिर भी यूं ही टेलीफोन नंबर आपसे बतला दूँ, टेलीफोन नंबर ट्वेल्व। अब हुस्न की बात होता है, आप ही के हुस्न

तो आपसे बतलाते चलते हैं दोस्तों, दूर कोई गाए धुनी ये सुनाए, कौन ये धुन सुनाता है, यही तो है आप ही की हिट स्टेशन, म्यूजिक स्टेशन, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो दोस्तों। और कभी कभी ये भी होता रहता है ना, प्यार करो, दिल खोल के दिल लुटवाओ, खुशी गम मिलेगा।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो परमाश्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम, एक गम मुस्कुराने के

पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे हमारे यारो हमारे दोस्तों। हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला जीना, हेलन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं, तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं, और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी खेलो।

मित्र दोस्तों, मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकालाल का यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालवान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरे दिल में आती ही रहेंगे। आओ नैतिक लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों, तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

की अनजानी सी कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

0: और दोस्तों इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे। आज हम आप लोग को भी कुछ पुराने गीतों से आपके हम सेवा करेंगे और पहला गीत हम बढ़ते हैं और वो है हाल है। हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, किशोर कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है और इस फिल्म में काम किया है जितेंद्र रेखा विनोद खन्ना ने काम किया है इस फिल्म में और फिल्म मूवी का नाम है अनोखा अनोखी अदा। अनोखी अदा की ओर हम चलते हैं।
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम,

और दोस्तों हाल क्या है, हाल क्या है दिलों का, ना पूछो ना पूछो सनम। आज भी बीच बीच में कुछ शायरी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे। क्या कहते हैं, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फसाना है, मेरे आगे मोहब्बत है और तेरे आगे क्या है दोस्तों, तेरे आगे जमाना है। तो कुछ कहते हैं एक और, कि तो हजार बार भी रोती तो मना लूंगा, तू हजार बार रो, तू हजार बार भी रोती तो मना लूंगा तुझे, मगर देख जानू मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो, तब तो मनावे, नहीं हो इसे लात ना चली। नहीं दोस्तों, प्यार में लात नहीं, प्यार चलते हैं। किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है, फिर क्यों बेवफाई के वो इल्ज़ाम दे रही है। तो हम चलते हैं एक गीत के ओर, वो है तेरी जाना दिल के, लेकिन चांदनी के पास हम जाते हैं। चांदनी क्या कहते हैं,

और मेरी चांदनी, अगर आप ऊपर देखोगे तो तुम्हारी चांदनी ऊपर आकाश में है या तुम्हारे बगल में है, ये तो आपके लिए हम छोड़ दे कि वो कहाँ है। तो दोस्तों कहते हैं पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, कि कहते हैं अपनों के बीच बेगानी हो गई है। अपनों के बीच कभी कभी होता है दोस्तों कि जो सोचते हैं कि हमारा है उसके बीच में तुम बेगानी हो गए हैं, अपनों के बीच में बेगानी हो गए हैं, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए हैं। जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वही वीरानी, आज वही पर वीरान हो गए है। तो हम चलते हैं अपनी महबूबा के ओर, और आपके महबूबा कौन है वो तो आपके बगल में होगा, लेकिन यहाँ हम फिल्म धर्मवीर के बातचीत करते हैं, और धर्मवीर में ये माँ धर्मिंद्रा, धर्मिंदर सिनत अमन और जोर तोर से इसमें काम किया है, परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

और ओ मेरी महबूबा, ओ महबूबा महबूबा में क्या क्या होता है, और गुस्सा होता है और प्यार भी उसी से ज़्यादा होता है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर दोस्तों, की जाती है इस झील की गहराई, जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, यानी कि दीप्त कहाँ तक जाते हैं, कि जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, आँखों में तेरी धूप के, आँखों में तेरी धूप के देखेंगे किसी रोज, आँखों में तेरी धूप देखेंगे हम और किसी रोज देखेंगे, और जो देखेंगे तो प्यार तो जरूर होता होगा, कि जो शख तेरे तस्वीर से ही महक ले जाए, जो तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारी दीदार में उसको क्या होगा। तो हम चलते हैं नाइटिंगेल लता जी के ओर, और इस फिल्म में राजकुमार नीतू ने काम किया है, फिल्म के नाम है अनारी।

और तेरा जाना ओ नैतिकी लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। हम चलते हैं और एक गीत को ओ लक्ष्मी के प्यारे लाल का गाया यानी बजाया हुआ सजाया हुआ ये गीत है मुकेश माइती मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग। फिल्म के नाम है जोंग मी तो दीवाना दीवाना और दीवाना। फिल्म मिलन की ओर हम लेकर चलते हैं हमारे दोस्तों।

और मैं तो भी दीवाना दीवाना और दीवाना हो चुका है। और हम चलते हैं कि कहते हैं महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, नींद इसके नींद के सफर में तू एक ख्वाब जैसा है। दो घूंट पिला देना गो, दो घूंट पी लेना दे आंखों से पहले से, नशा तेरी आंखों में शराब जैसा। तो दोस्तों तो हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर, और एक सुपर हिट बॉलीवुड सॉन्ग है जो एक इसको पहला पहला प्यार भी कहते हैं दोस्तों।

0: और पहला प्यार तो सभी को होता है, और जिसे पहला प्यार होता है उसके तो मालूम है कि प्यार क्या बातचीत है, प्यार क्या होता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत का एहसास, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों एक गीत की ओर हम जाते हैं। एक कोई ज़माना में ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जया प्रधान ने काम किया है, और ये फिल्म का नाम है शराबी। फिल्म के नाम पे दोस्तों, लेकिन हम शराबी नहीं हैं, फिल्म का नाम है शराबी। तो आओ मिलकर सुना जाए किशोर जी और आशा भोसले का गाया हुआ, आशा भोसले को गाया हुआ ये गीत है।
1: ये क्या मजाक है विकी साहब?
2: मजाक? कैसा मजाक? हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है, फिर हम मजाक किससे करेंगे?
1: वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक कहाँ है, ये हॉल खाली क्यों है?
2: हाँ, ये हॉल खाली क्यों है? वो आपके नटवर शाह साहब हैं, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे आप जैसे कलाकार की हौसला अफजाई करनी है, तो हमने सोचा कहाँ वो दर दर टिकट बेचते फिरेंगे, सारे टिकट हम ही ने खरीद लिए।
1: बड़ी मेहरबानी की आपने, शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह उसके दिल के आह के निशान मिटा देती है।
2: वाह, तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने, इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे, ऊपर ही ऊपर तैर के निकलते रहे।
1: जो बात की गहराई को नहीं समझता वो किसी कलाकार की कला को क्या समझेगा? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो किसी तवायफ के कोठे पर चले जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
2: तवायफ? कोठा मतलब हम आपको कोठे पर जाने वाले लगते हैं। मीना जी, हम तो यहाँ आपकी हौसला अफजाई करने आए थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया।
0: कभी जिंदगी में किसी को जलील मत करना दोस्तों, जलील जब किसी को किया तो वो अच्छा बात नहीं होता है, किसी को जलील मत करना।

और मुझे 9 लक्खा मंगा दे दे। और वो कौन है, किसको कहते हैं? सजना दीवानी के बात होते हैं। और आज आप लोग को हम क्या क्या सुनाएंगे दोस्तों, और हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसका कहते हैं दीवांगनी के ओर हम जाते हैं। कि दीवांगनी में एक लॉन्ग सॉन्ग है भाई, इसमें सैफ अहमद का गीत है, हम आपको सुनाते हैं।

0: सुर शांति ओम के बाद और बे हम और आगे को चलते हैं दोस्तों।
1: जब तक सांस और दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ शेर और कुछ कवाली गीत से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और जो जॉनी कहते हैं कान खोल के सुन लिए हमारा मौसी लोन और हमारे भौजी लोन कहते हैं दिल में बहुत दर्द है डॉक्टर के पास गया। जी हाँ हमारे प्यारे और प्यारे दोस्तों कहते हैं दिल में बहुत दर्द है डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने गर्लफ्रेंड को हमारा फ्रेंडेन को कमी बताई। और क्या बताए दोस्तों आप खुद ही सुनिए कि अगर जल्दबाजी में शादी करके जीवन बिगाड़ोगे सोच समझ कर करोगे तो कौन सा तीर मार लोगे हमारे दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी और कवाली से भी आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। आओ सुना जाए और ये है परमाश्री मन्ना देई आशा भोसले फिल्म का नाम है बरसात की रात और मधुबाला भारत का ये फिल्म है ना तो करवेटे की तलाश है और ये पुरानी गीत है। आओ मिलकर सुना जाए हमारे प्यारे दोस्तों।

0: ना तो करो की तलाश ही मन दी अशभोश्री का ये गीत वे फिल्म के नाम है बरसात की रात मधुबाला और भारत का ये गीत। दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ शायरी सुनाएंगे और कुछ चुटकली शायरी आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। दोस्तों कहते हैं माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, शादी कर लिए जिसे हमने वो तो निर्धन नारी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कहते आजकल के जमाना में कितने लोग हैं जो बहुत टिकटॉक पे जाते हैं, कितने लोग भैया फेसबुक पे जाते हैं, कितने व्हाट्सएप पे जाते हैं, कितने लाइव बातें करते हैं और क्या क्या होता, तो सबके लिए एक शेर हम यहां से कह देते हैं कि तो टिकटॉक के रानी, अरे टिकटॉक के रानी तू है, टिकटॉक के रानी और मैं हूं फेसबुक का राजा, तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूं फेसबुक का राजा, मिलाना है तो व्हाट्सएप पे आ जा। जी हाँ दोस्तों, जब मिलना है तो जॉनी के व्हाट्सएप पे आ जा। और दोस्तों और यहां से हम कुछ प्यार भरे गीत आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते बीबी भी हक की आग जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है भैया। और चलते हैं फिर मिलोगे कभी, कभी फिर मिलोगे ये रात फिर ना आएंगे। और ये गीत है आशा जी के और परमा श्री मोहम्मद रफी और विश्वजीत का फिल्म शर्मिला टैगोर जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।
1: फिर मिलोगे कभी

और फिर मिलोगी कभी, और ये रात फिर आएंगी, ये रात फिर आएंगी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी कुछ चुटकुले यानी फनी शेर, कुछ हंसमुख फनी शेर आज सुनाएंगे कि मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत। खूब ठीक से सुनना दोस्तों, मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत, पलट कर उसने जवाब दिया जैसे बनमाश तेरी सूरत। और दोस्तों ये सब प्यार भरी बातें आज क्यों हम लोग के बताते हैं कि कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता। ये तो सच बात है ना दोस्तों, आप सब कुछ वादा कर सकते हैं लेकिन मौत कब आ जाएगा इसका आपको और हमें मालूम नहीं है, तो वो वादा तो आप कर नहीं कर सकता है ना दोस्तों। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, जमीन मिले तो बंजर और आदमी मिले तो खंजर। तो हम जाते हैं दोस्तों, मेरे पैरों में आम घुंघरू बांधो फिल्म के नाम है सुंगरुस नई खतीन अख्तशस्त का, जिसमें दिलीप कुमार ने परमा और खन्ना ने काम किया है, परमा शिन मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और मेरे पैरों में क्या बांधेगा भैया, हड्डी कड़ी नहीं बांधना, और जब बांध दो घुंघरी तब नाच के घुंघरू हम सुनाएंगे कि हम क्या और कैसे नाचते हैं। और दोस्तों और यहाँ पे हम बताते हैं कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं कि पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल क्यों और मिले, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ता कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। नौ के रसराज कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं, कल कोई और मिले हमें तो ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। तो ये सब बात है दोस्तों, और कहते हैं मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, हट हो गई जब जब मैंने देखा वो मेरे 5 रुपया के पेन भी ले गई। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और ये भी गीत है, और ये है गाम, और ये है मुकेश का और नैतिक लता मंगेशकर का ये गीत है, धीरे धीरे बोल कोई जोर से ना बोलिए नहीं कोई सुन ना ले, और जब कोई सुन ले तब बप्पा मारी, तो जोर से ना बोलिए धीरे से बोलिए।

फिर धीरे धीरे बोल, अरे धीरे धीरे बोलियो, नहीं जब कोई सुन ले तो बप्पा मैया मारी, और अगर सुन लेगा भैया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे कि कहते हैं किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, किस किस का नाम ले अपने, इतना ढेर आदमी भैया जो बर्बाद करी से यहाँ बताई से, किस किस का नाम ले अपने बर्बादी में, बहुत लोग आया देने दुआएं मेरे शादी में। तो जितने लोग आए थे दुआ देने को शादी में, वो सब भाग्यदार है दोस्तों, यहाँ पे बताए गए उसके बर्बादी में। आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, दिल में तो होती ही नहीं होता, तो साला टूट कैसे जाता है। तो दोस्तों तीसरी कसम की ओर हम बढ़ते हैं, और तीसरी कसम एक फिल्म है, वो है नहीं खती शस्त्र शस्त्र के, और वो है मैथिली मुकेश ने इस गीत को गाया है, और ये बहुत पॉपुलर गीत है दोस्तों, कोई ज़माना में अभी तक लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि इसको हम चला देते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, अभी बताएं थे ना दोस्तों, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं मत भूलना, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, और क्यों, क्योंकि कुछ रिश्ता जिंदगी भर याद आते हैं। और हम चलते हैं इस गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

हम और आंगी को अपना प्रोग्राम को बताते चलाते हैं, बढ़ाते हैं, कहते हैं दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं, दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं, ये ग्रुप है नवाबों का, यहां कोई किसी से काम नहीं। ये भी कोई एक शायर है दोस्तों, कहते हैं रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, दिल में ख्वाबों का कमी नहीं होती, हम चाहते हैं उनको अपना बनाना पर उसके पास अपनों को कमी नहीं होती, वो हमें चाहते हैं ने भैया, तो हम ईटा मार के पत्थर चलाकर और क्या करेंगे, तो ये बात होते हैं। और मोहब्बत करने वालों को और मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को सेवा कर, दोस्तों आप लोग बैठक गाना में ये गीत सुना होगा, कितने लोग बोले ये ओकर ऐसा गाना है, ये ओकर ऐसा गाना है, लेकिन आज हम आप लोग को एक ओरिजिनल गीत को सुनाएंगे जो नाइटिंगेल लता मंगेशकर इस गीत को गाए हैं और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरी आंगन की नीखतिन अख्तन जीवन तक का, और कितने हमारे सूरीनाम के कलाकारों इस गीत को गाए हैं और अन्य देशों के कलाकार भी इस गीत को गाए हैं, और जिसको मालूम नहीं है तो वो बोले वो अडमिया गाई से, वो अडमिया नहीं दोस्तों, ये गीत हमारा दीदी स्वर्गीय और हमारा लता जी नाइती की लता मंगेशकर का ये गाया हुआ गीत जो आज हम आप लोग को ओरिजिनल सुनाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए।

छाप तिलक सब छीन ली और मुझसे नैनाल मिलाई की। और दोस्तों उसी दिन से व्हाट्सएप से हमें नफरत हो गई। आप जानते किस लिए ना? ये व्हाट्सएप तो आज पूरा दुनिया में चलते दोस्तों, और कहते हैं उसी दिन से व्हाट्सएप से नफरत हो गई जब बाल कटवाते के लिए आदमी ने चंदा मांग लिया। ये कौन सा बात है दोस्तों? और उसके बाद हम चलते हैं प्यार भरी बातें और प्यार भरी गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों, और सुनाता ही रहेंगे। हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो भी है नाइटिंगेल लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है, और ये मूवी के नाम फिल्म के नाम है असली और नकली। असली और नकली, और ये फिल्म बना है 1966 में, और यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि इस देवानंद ने फिल्म में काम किया है, और कितने लोग हैं जिसका नाम भी देवानंद लोग फिल्म में देखकर धर देते अपनी बेटी को। और यहाँ पे बताई गई कि तुझे हम अपने जीवन के डोर से बांध लिया है, ना ततई से बांध लिया है, केती से बांध लिया है, अपने जीवन के डोरा में, मतलब अपन लीफस पार्टनर तुझे हमने बना लिया है। और फिल्म के नाम है असली और नकली। आओ मिलकर सुना जाए।

और मेरी जीवन की डोर पर। और क्या हुआ भैया, जीवन की डोर से बांध लिया है। और जीवन की डोर में कौन बांधते हैं, जब किसी से आपको आपसे प्यार हो जाता है और अपनी जिंदगी उससे और चलाना चाहते हैं और कहते हैं ऐ चांद कुछ बेवफाई के, यानी कि टूटा हुआ दिल का शेर हम आप लोग को, जुदाई का शेर आप लोग को हम। और यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ऐ चांद चला जा क्यों आँच है मेरे चौखट पर, ऐ चांद चला जा क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गई वो शख्स जिसका, छोड़ गई वो शक जिसका धोखे में हमने तुझे देखता था, यानी कि उसका जो लड़की था या लड़का उसका वो चांद देखता था, अब वो धोखा से चला गया। तो वो कहते हैं कि ये चांद असली चांद को कहते हैं जो रात को निकलते हैं, कि ऐ चांद चला जा क्यों आज को क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गया वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझको देखते थे। ये बात है। और कहते हैं कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, इस हाल में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी करीबी, किशोर जी और लता जी का फिल्म का नाम है आसपास निखते हुंदत एन एन तख्त का ये गीत है, जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा भी इसमें और काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और तुझे दिल में जब हम बन कर लूंगी तब उसको चाभी हम उठाए के बोले पानी में बिक देवे, और जब पानी में हम बिक देवे तो कैसे तू दिल में से निकलिए, ये बात हुआ है हमारे दोस्तों। और दोस्तों ये गीत क्या होगा, और ये गीत है चल चमेली। अरे चल चमेली, और कहाँ चलेगा चमेली, हाँ प्रेम बाग में चल। फिल्म के नाम है क्रोधी नीखते इन तख्त का, ये फिल्म है, आओ मिलकर सुना जाए।

और चल चमेली बाग में और क्या खाएंगे, आपको तो मालूम है कि मेवा क्या होता है दोस्तों। और लता मंगेशकर और इस गीत को सुनाए, फिल्म का नाम है क्रोधी। और दोस्तों हम कहते हैं

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को निकटीन 55 तक का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

पद्माश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और द्वैत सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत, एंड सेस का ये सॉन्ग है।

के भंवरे करे पुकार अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कहीं पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत दोस्तों देखती होंदत एहसास फेर तक का मौफी का नाम है अनमोल घड़ी अनमोल घड़ी मौफी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों। Toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet, ik heb deze film ook niet gezien. Maar hamare dosto jo hai yahan pe radio par wo sab is film dekh chuka hai aur humse kaha ki Johnny zarur chalana to hum zarur chalayenge aao milkar suna jaye ye kaalam nahi hai dosto ye kuch aur hai।

पे हम उड़ जाएंगे मौफी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों। और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सोरेबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया सहूर राजा अनवरी मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाओ नेगेटिव 125 का ये सॉन्ग है दोस्तों। और इस गीत आओ सुना जाए, दिस इज हेमंत दादा।

Jal, 1952 का ये सॉन्ग है और वो बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते हैं।

गौर बचपन के ये दिन आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो सम्मान है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारे आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेंगे तो दुनिया बोलेगा कि सरक के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। उरन खटोला मूवी का नाम है।

और वो रहेगा। और आपको आज भी हम कोई प्यार भरे गीतों से, आपको हम प्यार भरो गीतों से मलामाल करेंगे कि आज गालो और मुस्कुलारो, महफिल भी सजा लो, ना जाने कल कभी कोई साथी छूट जाए। और फिल्म के नाम है ललकार, परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम चलते हैं एक गीत की ओर, और वो गीत है गंगा जैसा मन तेरा। गंगा जैसा मन तेरा है और मोहम्मद अजीज इस गीत को गाया है। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

तुम तो ठहरे परदेसी और सियात क्या निभाओगे जरा बताओ। अगर जब आप किसी परदेसी से प्यार करेंगे तो उसको कौन भरोसा है, कौन भरोसा है कि वो साथ तेरे साथ वो निभाएंगे। तो हम चलते हैं अलका याग्निक और माधुरी दीक्षित का जिसमें काम किया है, फिल्म के नाम है खलनायक की ओर।